0: offices of Omar Khwaja in association with Passion Health Primary Care.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: हो सकता है आपका नेक्स्ट कस्टमर भी आपको ही ढूंढ रहा हो। जॉइन पास या एंड मार्केट योर बिजनेस फॉर फ्री। शोकेस योर डील्स एंड गेट डिस्कवर्ड बाय कस्टमर्स नियर बाय। पास या बी वेयर योर कस्टमर्स आर लुकिंग।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
6: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
7: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
8: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
11: Sign milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous nihari, sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering paratha rolls. Aur koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Har taste par apna signature.
12: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary awaaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड

0: Thank God it's Friday. आप सबका बहुत बहुत स्वागत 104.9 FM Fun Asia Radio पर. मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता पानसाथ, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑन थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. जन्मदिन मनाने के बाद अब आता है अपना नेक्स्ट सेगमेंट, और वो सेगमेंट मैं बताऊंगी इस गाने के बाद जिसको रिक्वेस्ट किया है जली जॉन ने. दिस वन फॉर यू.
1: सारेगामा कारवा, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस.

0: Another Hewan. Saif Ali Khan is film mein and Akshay Khanna, Akshay Kumar hai. He is in the negative role and Saif Ali Khan is the hero, but he is blind. He cannot see. Preetam ka music, Shaan ki awaaz, Sukhvinder Singh de rahe the unka saath, and this one beautiful, beautiful music just for you, Preetam. Yes, definitely great music that comes out from him. हो जाए आपके लिए वो ही वाला गेम जिसको आप खेलते हो फ्राइडे के फ्राइडे मेरे साथ.
1: कर हिंदी हिंदी बोल,
0: ओयो ओयो ओयो, ये जमूरे क्या बोलेगा? बोलेगा तो बस हिंदी. नॉट अलाउड इज अंग्रेजी. पता नहीं कहाँ से घुसी चली जा रही है हमारी हिंदी भाषा में, सेटल हो जा रही है जैसे वही बिलोंग करती है, और हम चुन चुन के वो शब्द बाहर निकाल रहे हैं बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आर हिंदी लैंग्वेज. उर्दू इज अलाउड क्योंकि उर्दू एंड हिंदी गो सो वेल टुगेदर, सो वी आर नॉट पुलिंग आउट अदर वर्ड्स दैट कैन गेट इन टू हिंदी. बट इंग्लिश नन नन नन नन नन, नॉट अलाउड. एब्सोल्युटली बाहर जाइए, है ना? सुन रहे 104.9 FM फनीचर रेडियो. एक ब्रांड न्यू गाना और. विवान फिल्म आ रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना की.

0: A sweet, simple, feel-good melody coupled with new age sound. This is Babul, talks about support and belief, fighting all odds, defying so-called norms and eventually winning all from the female POV point of view. So this is, while it addresses something specific, the presentation of that thought is applicable to multiple situations. So that was a song right here for you. 104.9 FM Funny Jari Duper Babul Tha Naam Is Gaane Ka. Le rahi hu apne agle listener ko on Fun Asia Radio. Aapka swagat hai Gal Hindi Hindi Bol par. Hi, how are you?
1: Main achhi hu, aap kaise ho?
0: Ekdam first class. Aap Gal Hindi Hindi khelne ke liye taiyar hain?
1: Haan.
0: So your time starts now. Bataiye hamare listeners ko, what is your name?
1: Mera naam Vimal hai.
0: Vimal?
1: हाँ.
0: Only Vimal. Alright, Vimal ji. Welcome to Gal Hindi Hindi Bol.
1: हाँ.
0: So, क्या कर रही हैं आप?
1: मैं अभी घर पहुंची हूँ.
0: कहाँ से?
1: काम से.
0: Okay, what do you do?
1: मैं लोगों को सुंदर बनाती हूँ.
0: Oh, really? So sweet. You work in a beauty parlor?
1: हाँ.
0: Makeup artist हैं?
1: नहीं.
0: All right. So, इतना लेट हो जाता है एवरी डे आने में?
1: हाँ, मुझे मैं नौकरी थोड़ी दूर करती हूँ तो फिर.
0: अच्छा, so lot of driving time.
1: समय लग जाता है. हाँ.
0: So how long is the driving time? आप बहुत धीरे नहीं खेल रही हैं, आप सुन सुन के सोच सोच के इतना थोड़ी सोचना है, जस्ट बोलना है. तो क्या? हाँ, टेल मी, बताइए. हेलो.
1: एक घंटा.
0: ओके, एक घंटा. बिकॉज़ वेयर डू यू वर्क?
1: अपटाउन डेलिस.
0: अपटाउन डैलस. ऑल राइट. और कहाँ पर ड्राइव करके लौटती हैं?
1: वाइली.
0: वाओ, दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग ड्राइव. रियली?
1: यस.
0: सुपर. यस. ऑल राइट. ओके, मैं यस तो नहीं दे पाऊंगी, बट अपटाउन डैलस को फिर भी मैं दे दूंगी, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर नाउन, डैलस नाम. बट अपटाउन हम छोड़ सकते थे, बट एनी वेज आई लेट दैट गो फॉर यू. But yes, yes, तो yes है.
1: वो area, वो location का नाम ही वो है uptown.
0: हाँ, ठीक है. इसलिए मैंने छोड़ दिया, कुछ नहीं बोला. Yes को तो पकड़ा ना. But no worries, Vimal, आप खुल के खेल सकती थी. But no worries. Thank you so much.
1: ये मेरी दूसरी try थी.
0: हाँ,
1: दूसरी try थी. Actually, we are not from Hindi family. हम लोग घर पे गुजराती बोलते हैं, तो फिर हिंदी उतना हमारा नहीं है टच में, तो फिर उसके लिए थोड़ा.
0: हाँ, नो, आप तो बहुत अच्छा खेल रही है. लोग तो अच्छी खासी हिंदी फैमिली होकर भी मुश्किल होती है. बट सुपर, गुड फॉर ट्राइंग. एटलीस्ट यू आर मेकिंग एन एफर्ट, दैट इज सुपर.
1: हाँ, मैं एवरी शुक्रवार को आपका वेट करती हूँ, लाइक जॉब से आने से.
0: हाँ.
1: कि नहीं, मैं आपको सुनूं.
0: How lovely. Thank you so much, Vimal ji. Shukriya sunne ke liye.
1: Yeah. Thank you.
0: Yeah. You have a wonderful evening and a great weekend, okay?
1: Yes, you too. Bye.
0: Bye-bye. Awesome. Only Vimal. Pata nahi Vimal naam sunte se ye yaad aa jata hai. But the song, right here, right now.

0: This one from Bhoot Bangla, another Akshay Kumar's film with Vamika Gavi. Pritam ka music, Arijit Singh ki awaaz. Nikita Gandhi unka saath de rahi hain. 104.9 FM Fun Asia Radio mein sun rahe hain. Chaliye main apne agle listener ko leti hoon on Girl Hindi Hindi Bol. Welcome on Girl Hindi Hindi Bol. Swagat hai aapka. Hi.
1: Hello.
0: What is your name?
1: Ji, mera naam Komal hai.
0: Komal, sabse Komal. Mere Raj Dulare. I don't know whether you ever heard this or ever. There was a very cool serial jo Vikram aur Betal ka aata tha. Usme tha ye. Haan, bachpan mein. So this was a line there wo jo mere dimag mein stuck hai. Komal.
1: Mujhe to khali ek hi dialogue yaad hai.
0: Tu bola aur main chala. Correct. So, Komal ji, gal hindi hindi khelne ke liye taiyar hai?
1: Ji, bilkul.
0: Shuru kiya jaye aapka waqt.
1: Ji.
0: So, your time starts now. Wonderful. Abhi no angrezi, okay?
1: Ji.
0: Very nice, Komal. Where are you going?
1: Main abhi yahan ruki hui hoon.
0: Matlab aapne park kar liya hai?
1: Haan ji, aapse baat karne ke liye.
0: Achha, very nice. To aapne pehle bhi khela hai?
1: Ji, nahi. Mere husband ne khela hai.
0: ओह तो फिर उनका क्या हर्षर हुआ
1: जी वो खेल नहीं पाए
0: नहीं खेल पाए ओह नो हाउ डिड दिस हैपन सो आज आपको जीतना जरूरी है उनको दिखाने के लिए
1: जी नहीं ऐसे ही
0: सो वो कहाँ है
1: मेरे बगल में बैठे हैं
0: अच्छा आपने हस्बैंड बोला था क्या मैं बस लेट गो करने कर ही रही थी बट देन आपको छोड़ ही नहीं थी लेकिन बस मजे ले रही थी सो देयर यू गो यही तो बात है हिंदी के अंदर ऐसे अंग्रेजी घुसी पड़ी रहती है पति देव बट थैंक यू सो मच कोई बात नहीं दोनों जन का अब रिकॉर्ड क्लियर हो चुका है अब नेक्स्ट टाइम शुरुआत होगी
1: बिल्कुल कोई बात नहीं मजा आया
0: थैंक यू मुझे भी बाय बाय सुरैल 104.9 FM फन एशिया रेडियो चलिए एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ और उस इन्फॉर्मेशन के बाद आपको क्या करना है कुछ भी नहीं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इंश्योर होम लोन्स एंड ओमार ख्वाजा They present Make Your Ganesha with Fun Asia Network. And this Ganesh Chaturthi, children ages 5 to 12 are creating their own clay Ganesha.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
4: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
6: जिंदगी एक रंगमंच है
7: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 9728971530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय
9: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
10: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगा एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
11: इतना सब और प्राइस
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
12: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को साउथ इंडियन अब जाए तो जाए कहाँ
10: सिंपल बसेरा ग्रैंड वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर
13: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा
10: यस रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं
13: वाओ ग्रेट फूड फुल variety and everyone's happy.
14: Family dinner ho ya friends ke saath celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand. Come hungry, leave happy together.
15: Ye tara wo tara har tara.
16: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
17: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial plan, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
18: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal. Sadia!
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: वेलकम वेलकम बैक टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। सुन रहे हैं आप मेरे साथ, मैं हूं आपकी होस्ट नवनीता, 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ये शो रहता है एवरी फ्राइडे के फ्राइडे। थैंक यू आने के लिए, जुड़ने के लिए। आई नो अ लॉट ऑफ कॉल्स फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल, वो बस एक गाना बजता है, देन आई विल टेक योर कॉल्स फॉर गर्ल हिंदी हिंदी बोल। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कॉल करने के लिए, जुड़ने के लिए गर्ल हिंदी हिंदी बोल पर। पर दोस्तों, किसी ने कहा है, दोस्ती अगर है तो इतना जरूर याद रहे। दोस्ती अगर है तो इतना जरूर याद रहे, ताल्लुक रहे ना रहे, मगर राज हमेशा ही राज रहे। लगी क्या ठाएं? यस, दिल पर दिल की बात दिल पर लगे ना तो लगती है ठाएं। And this is so important for a good friendship.

0: Beautiful song, Hindi voice of Arijit Singh, Ram Sampath ka music, Irshad Kamil ke bol, Ek Din film ka naam hai. Junaid Khan, Aamir Khan ke bete aur Sai Pallavi is film mein. And is mein gana Arijit Singh ne playback singing diya tha. That was one, a few of the unfinished work which he was still working on before his retirement. Chaliye leti hoon main apne agle कॉलर को ऑन फनीजा रेडियो गर्ल हिंदी हिंदी बोल. वेलकम, आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल में.
1: हेलो, थैंक यू.
0: वेलकम, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम स्वाति है.
0: स्वाति जी, आपने खेला है गर्ल हिंदी हिंदी बोल पहले?
1: नहीं, पहले नहीं खेला है.
0: ओ, सुना है?
1: सुना है हाँ.
0: अच्छा, ठीक है, चलिए आपका वक्त शुरू करते हैं. ओके,
1: बिल्कुल.
0: ऑसम, ऑलराइट. तो आपने सुना है, तो कितने समय से सुन रही हैं आप गर्ल हिंदी हिंदी बोल?
1: गर्ल हिंदी हिंदी बोल जब से मैंने फनीशा सुनना शुरू किया तभी से सुन रही हूँ. और फनीशा सुनना मैंने पिछले शायद एक साल से शुरू किया है.
0: तो आप एक साल पहले मूव हुई हैं यहाँ पर डैलस में?
1: नहीं, यहाँ तो मैं मूव हो गई थी 2021 में. पर जब से मैं गाड़ी में ज्यादा ड्राइव करती हूँ तब से मैंने ये सुनना ज़्यादा शुरू किया.
0: मूव एंड ड्राइव, ये सारे जो है ना अंग्रेजी शब्द जो हमारे शब्दों में घुस गए हैं. जब मैं 2021 में मूव हुई तब से मैं ड्राइव कर रही थी.
1: मैंने 2021 तो बोला पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैंने मूव कब बोल दिया.
0: और बट भी आए हैं एक दो इधर उधर.
1: सही बोला आपने.
0: ऑलराइट, आप 2021 में मूव हुई लेकिन आप घर पे नहीं कभी आप सुनती थी व्हेन यू वर हियर?
1: अभी घर पे नहीं, गाड़ी में. हम लोगों ने गाड़ी में ही ज्यादा सुनते हैं. जब भी ड्राइव करते हैं मतलब गाड़ी चलाते हैं तब हम ज्यादा सुनते हैं. वो हमेशा चालू रहता है गाड़ी में. तो हम और कोई संगीत सुनना पसंद नहीं करते हैं इसलिए हम हमेशा फनीशा सुनते हैं.
0: नाइस, सुपर. ऑलराइट स्वाति जी, नेक्स्ट टाइम होगी बात फिर से वार्तालाप. ऑलराइट,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: एंजॉय, हैव अ ग्रेट वीकेंड.
1: यू टू, बाय बाय.
0: सुपर, ये हिंदी का मजा है यार. हम तो ड्राइव ही करते हैं यार, कौन गाड़ी चलाता है. और फिर बट तो ऐसे ही आ जाता है. और फिर जब वो मूव हुई थी थोड़ी ना वहाँ से, यार घूम फिर के क्या ही बोल लेंगे आप मूव को. पर ये जो है जिनका गाना अभी बजने वाला है, इनके लिए मेरे इनके ऊपर मेरे पास एक स्टोरी है. अपडेट करने वाली हूँ इस गाने के बाद.

सुपर 104.9 एफएम फर्नीचर रेडियो पर इस गाने में आप कैटरीना कैफ है, सबको पता है सिद्धार्थ मल्होत्रा है, काला चश्मा, हमने कितना डांस किया है। पर आपको पता है कैटरीना कैफ को एक बार बोला गया था कि कैटरीना कैफ को बोला गया था और ह्यूमिलेट किया गया था, ये बता रहे थे कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, एक अर्ली उनकी करियर पे बोल रहे थे, एक कोरियोग्राफर थे जो वंस ह्यूमिलिएटेड हर एंड एसेंशियली टोल्ड हर, यानी कि कैटरीना कैफ को, दैट शी वाज जीरो एट डांसिंग। कैन यू बिलीव इट? तो कोरियोग्राफर बॉस्को जो है वो कहते हैं इन कॉन्ट्रास्ट, अब आप देखिए क्या ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट है उनमें, इवेंचुअली रीचिंग परफॉर्मेंसेज लाइक काला चश्मा, राइट, शीला की जवानी, चिकनी चमेली, कमली, ये सारे कैटरीना कैफ ने डांस किए। और जब वो नई नई आई थी तो एक कोरियोग्राफर ने बोल दिया था क्या डांस करती है, कुछ सीख, यू आर ज़ीरो एट डांसिंग। ज़ीरो मतलब ज़ीरो कैसे बोल सकते हो, 5-6 नंबर तो मिल ही सकते हैं उनको अगर वो नई नई भी आई हैं उनके मूव्स। अरे दिस इज़ कैटरीना कैफ एंड लुक एट हर मूव्स, शीला की जवानी, चिकनी चमेली, तो फिर क्या कहते हैं आप? एक बार बताऊं आपको, आज फ्राइडे की रिमाइंडर है, समवन्स ओपिनियन ऑफ व्हाट यू कैन नॉट डू टुडे डजंट डिसाइड व्हाट यू कैन बिकम टुमारो। ओके, कल आप कुछ भी बन सकते हैं, आज वो डिसाइड नहीं करता कि आप क्या है, राइट? यस, ये प्रूव करके दिखाया कैटरीना कैफ ने।

0: सुपर, राम जी आके भला करेंगे। भूत बंगला ये फिल्म एक्चुअली फनीशा फिल्म्स ही लेकर आई थी ऑल ओवर द यूएस। दैट इज व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूटेड भूत बंगला फॉर ऑल ऑफ यू। लेती हूँ मैं अपने अगले लिसनर को ऑन एयर। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है गर्ल हिंदी हिंदी बोल।
1: धन्यवाद।
0: क्या है नाम आपका?
1: मेरा नाम है संजय और आपका नाम तो मैं बहुत अच्छी तरह से आज सुना सुबह मैंने।
0: हाँ।
1: कि आपका पूरा नाम है खेमकार, तो मैं बहुत खुश हुआ सुनकर।
0: क्यों खुश हुए?
1: क्योंकि मुझे लगा कि खेमकार जिस जाति से मैं करता हूँ उसी जाति के आप होंगे।
0: अच्छा।
1: यानी जो जिस जगह से मैं अब शुरू नहीं हुआ गेम तो मैं कुछ
0: हाँ।
1: ऐसे शब्दों का कर सकता हूँ।
0: उस तूपाल अच्छा इस्तेमाल बोल रहे थे। हाँ जरूर जरूर कर सकते हैं, अभी तक शुरू नहीं हुआ है।
1: हाँ, तो मैं बोलता कि मुझे लगा कि यू माइट बी बिलोंगिंग टू द मारवाड़ी कम्युनिटी सॉर्ट ऑफ थिंग, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट योर लास्ट नेम इज खेमका।
0: ओह लवली, व्हाट इज योर लास्ट नेम संजय जी?
1: जेन।
0: जेन, ऑलराइट, यस, सो वी बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी, करेक्ट।
1: दैट्स राइट। बट आई वाज नेवर, आई हैव हर्ड योर प्रोग्राम्स फॉर सो मेनी इयर्स आई कैन से, बट आई नेवर न्यू योर लास्ट नेम टिल आई हर्ड द एडवर्टाइजमेंट टुडे मॉर्निंग। अगर मैं ऐसे हिंदी बोलते गया तो मेरा वही फ्लो रहेगा। नहीं नहीं, अब मुझे हिंदी में ट्रांसफर कभी क्या शब्द होता है, मुझे आ जाने दीजिए हिंदी के इसमें।
0: तो आपका वक्त शुरू करूं?
1: करो दो, अभी तो हारना ही है।
0: हार के सोच में नहीं शुरुआत करनी चाहिए।
1: हाँ, नहीं, नहीं,
0: हर हार के आगे जीत होती है।
1: हर हार के आगे जीत होती है, वो तो आपकी बात सही है।
0: वंडरफुल, सो नाइस। तो फिर इतने साल से आप मेरा शो सुन रहे हैं, आप बोले तो इस शो में आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं राजस्थान मारवाड़ी हो सकती हूँ?
1: हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, मगर आप किस राज्य से होंगे वो मुझे नहीं पता चला। लेकिन आज जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि हाँ, ये हमारे ही राज्य से।
0: तभी हिंदी इतनी
1: अच्छी
0: है। जाके,
1: हाँ, तभी जब मैंने समझा कि हाँ, इसमें अच्छा लगा सुनकर। और मैं वहीं पे मैं रुक गया। फिर मैं बोला आज शाम को आपसे बात करूंगा और आपको बोलूंगा कि मैं बहुत खुश हुआ सुनकर।
0: वाह, मोगाम्बो, खुश हुआ, वेरी नाइस। तो फिर आप, मैंने सुना कि आप सुनते सुनते रेस्टोरेंट में घुस गए और वहां पर खाना भी खा रहे हैं।
1: हाँ जी, बिल्कुल खा रहा हूँ, भूख भी तो लगती है ना। जो कानों को सुकून दे वो एक अलग चीज है और जो पेट को सुकून दे वो अलग चीज है। तो मैंने कहा क्यों ना दोनों का सुकून लिया जाए।
0: ओह वाओ, वेरी नाइस। तो फिर आप ये आप खाते खाते बात कर रहे हैं?
1: हाँ, अभी मेरा इंतजार हो रहा है,
0: आप फैमिली के साथ आए हैं?
1: हाँ, सपरिवार आए हैं।
0: ओह वेरी गुड, एंड देन आप लोग रेस्टोरेंट में बैठ के मेरे से बात कर रहे हैं?
1: बिल्कुल, आपसे तो हम कहीं भी कभी भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर बैठकर खा रहे हैं उसमें क्या हर्ज है?
0: हाँ, उसमें क्या हर्ज है, वही सही बोला आपने, वेरी नाइस। आप तो बड़ी अच्छी हिंदी बोलते, वेरी वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड कि आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते।
1: कोशिश कर लेते हैं, आपके सामने तो बहुत कमजोर है, लेकिन कहीं कोशिश कर लेते हैं, इतना ही कह सकते हैं।
0: वेरी नाइस, तो वेरी वेरी गुड, आई लाइक योर हिंदी, कंग्रेचुलेशंस। आपको मिलता है फ्यूजन रिपब्लिक इंडियन किचन एंड बार की तरफ से गिव अवे। हाउ अबाउट दैट?
1: बहुत बढ़िया, ऑसम,
0: ऑसम। तो अभी सुनिए, फ्यूजन रिपब्लिक, फैबुलस फ्यूजन फ्लेवर्स, एंड नाउ इन इरविंग। ओके, आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं डेली 25 आइटम लंच बफे फीचरिंग चाट, तंदूरी फेवरेट्स, बिरयानी, फ्यूजन स्पेशलिटीज एंड मोर। डिनर्स अवेलेबल आला कार्ट में। आप विजिट कर सकते हैं 8080 वॉल्टन बुलेवार्ड इरविंग। और अभी आपको मिलता है सीरागा सांबा और दम मटन बिरयानी और वेजिटेबल दम बिरयानी। आप क्या यूजुअली प्रेफर करेंगे? आप तो मटन नहीं खाते होंगे, राइट?
1: नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाता, लेकिन आपने दूसरा क्या ऑप्शन दिया, एक मटन और आर यू ऑफ एयर और आर यू ऑन एयर?
0: ऑन एयर, एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू यू। वेजिटेबल दम बिरयानी, एंड ये है सीरागा सांबा। ये क्या है मुझे नहीं पता, बट सीरागा सांबा कुछ तो होगा जो लोग जानते हैं, बट इफ यू डोंट नो, इफ आई डोंट नो, दैट मींस मे बी वी डोंट ईट, है ना?
1: Absolutely, that's the way we can take it as.
0: So vegetable dum biryani. But don't worry, I'll take your information, but all this information I had to give to my listeners as well. Those are the Fusion Republic Indian Kitchen and Bar is superbly flavored. कितने अमेजिंग फ्लेवर्स है, 25 आइटम्स लंच बफे में है। तो एक गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ और उसके बाद इनका इन्फॉर्मेशन लेती हूँ। नाम है संजय जी, राइट? हाँ, एंड मजा आ गया इनके साथ खेल के, है ना? बट बड़ी अच्छी शुद्ध हिंदी बोलते हैं।
1: कोशिश करते हैं।

कर ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतनी कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: कौन से एंगल से तू आइटम गर्ल लगता है तेरे को?
1: सुन रहे 104.9 FM फनीजा रेडियो. ये एक्चुअली आमिर खान का कुछ डायलॉग आ रहा था बट मैंने उसे रोक दिया. थैंक यू दोस्तों ट्यून इन करने के लिए 104.9 FM फनीजा रेडियो पर. एक अपने नेक्स्ट लिसनर को मैं ऑन एयर लेती हूँ. सो संजय जी ने जीत लिया हिंदी एंड ही सेड वो पहले भी दो बार जीत चुके हैं एंड so he was just telling me off air and this is the third time that he won so he is so good in hindi matlab unki control hai kitni achhi hindi hai I know but he knows ki jab game shuruaat ho jaye to angrezi nahi bolne ka leti hu main apne agle listener ko good evening Faisal radio swagat hai aapka gal hindi hindi bol mein
2: hi ji mera naam sanjay hai
1: आपका नाम भी संजय है हाउ कम ये संजय लोग अभी डुप्लीकेट संजय का कॉल आ रहा है और आपका संजय लास्ट नेम क्या है
2: बरोरकर
1: बरोरकर
2: या
1: ऑल राइट संजय जी तो आप गल हिंदी में जुड़ना चाहते हैं
2: जी
1: जी ऑल राइट सो लेट मी स्टार्ट योर गेम
2: ठीक है
1: Your time starts now. All right. तो आप पहले वाले संजय जी को सुन रहे थे?
2: No.
1: No.
2: जी नहीं.
1: No. जी नहीं. आप पहली बार खेल रहे?
2: जी हाँ.
1: ओहो. No कैसे निकला? मुंह से. But ये no. No निकल गया. I'm so sorry. But awesome. आप अब और सुनिए लोगों को. Okay? You have a wonderful weekend.
2: Okay.
1: अयो रामा छोड़ सकती थी नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है कि बस यू नो गेम तो गेम होता है ना चलिए लेते हैं अगले गाने को ऑन एयर लेते हैं अपने गाने को ऑन एयर वाह

0: किसी को रोसना नहीं है, मनाना नहीं है, बस हमें यहीं रहना है। और पता है आज 5 से 8 ही नहीं है मेरा शो, मैं 1 घंटा एक्सटेंड कर रही हूँ, तो 5 से 9 है आज की शाम आपका और मेरा साथ। कहीं जाएगा मत, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन बाय बाय नहीं बोल रही हूँ, वापस आ रही हूँ फॉर एन आवर मोर।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
4: Call 857-891-8942 today.
5: अजी सुनते हो?
6: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
7: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
8: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज। होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज। लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू।
9: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 through 2026। मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर। कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे।
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.

शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, 5-7 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रहता है मेरा शो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जी हाँ, जिसकी आवाज तो आपने ऐसे ही सुनी होगी।

पर चलिए, यस यू आर राइट, 8 तो बज गए. व्हाट इज रॉन्ग विद मी? नथिंग इज रॉन्ग विद मी. फिलिंग अप फॉर स्वाति फॉर एन आवर. ये 8 से 9 रहेगा आपका मेरा साथ ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. यार फ्राइडे आते से ही मूड में मजा आ जाता है क्योंकि ये वीकेंड खिंच जाता है. और आज तो फ्राइडे की शाम कुमार शानू का शो बहुत लोग इंजॉय कर रहे हैं. ऑलरेडी आपके फैमिली से कोई गया होगा, फ्रेंड्स गए होंगे, या फिर आप लेट हैं और अभी जा रहे हैं, तो ओके दैट्स फाइन टू. एंड इफ यू आर डिसाइडिंग नॉट टू गो बिकॉज यू ऑलरेडी वॉच कुमार शानू एंड यू आर लिसनिंग टू सम नाइस सॉन्ग्स विद मी, यस यू आर वेलकम ऑन माय शो. ये टोटली गल हिंदी हिंदी बोल चल रहा है, जारी है. एंड आई नो लॉट ऑफ यू स्टिल कॉलिंग मी, सो यस व्हेन इट इज स्ट्रेच फॉर एन आवर व्हाई नॉट गल हिंदी हिंदी बी स्ट्रेच्ड एज वेल.

0: You're different. You know, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो. You really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता. Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.
2: Totally. ये लेटर तो सबको लिखनी चाहिए. Love you, zindagi. And then you see, you get a reply back that love you too. वैसे 80s का ये जो दौर चला रहा है, ये जो वायरल हो रहे हैं सब रील्स, everybody's posting pictures और अपने आप को 80s के रूप में, and उसके ऊपर भी memes बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी people are posting these pictures, viral ho chuka hai. Everybody has one 80s picture. Do you? If you don't, then go write on ChatGPT, mera ye picture ko 80s ka bana do, and then you see what the transformation is. Lekin main jo bol rahi hu, memes bhi aise ban rahe hain. Kuch koi likhte hai, ya lagta hai wo 80s ke daur mein na ek hi darzi aur ek hi nai tha, sabke hairstyle aur sabke kapde similar hai, kyu bhai? Hai to. And there's lot of other, koi bolta hai ki यार ये जो हमको 80s में पहुंचा दे रहे लोग, कभी ऐसा ना हो AI 80s में पहुंचाते एक दिन ये भी निकल गए, हम बताएंगे तुम्हें कि तुम अपने पिछले लाइफ में क्या थे. ओ माय गॉड, राइट है ना, कुछ भी हो सकता है. AI का ज़माना है यारो. तो चलिए इसी पर लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर कॉन एयर. गुड इवनिंग, फन एशिया रेडियो पर स्वागत है. कैन यू स्विच ऑफ योर रेडियो प्लीज़. Hello? Yes, I can hear you. Hi. Hello.
3: Namaste.
2: Namaste ji. Yes, wow. Now I can hear you. What is your name?
3: Mera naam Shiv Kumar hai.
2: Aapka naam Shiv Kumar. Ab aise ruk ruk ke bolenge. Shiv aur Kumar ke beech mein bhi English ghus sakti hai kya? Nahi na. Anyways, let me start your time now, Shiv Kumar ji. Aap please ek baar without punna viram kiye bas chalte chale jaiye.
3: Ji avashy.
2: Very nice. So phir kahan ja rahe hain aap, drive kar rahe
3: hain? Ji main vahan ko gati de raha hu.
2: Wow, unko gati de raha hu. Aap de rahe ho, aap petrol ho. आप गैस हो?
3: नहीं, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ.
2: अच्छा, गाड़ी को चला रहे हो, वेरी नाइस. तो फिर आप गाड़ी को चला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी को?
3: गाड़ी को घर

0: गाड़ी को चला रहा हूँ।
1: अच्छा, गाड़ी को चला रहे हो, वेरी नाइस। तो फिर आप गाड़ी को चला रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो गाड़ी को?
0: गाड़ी को घर ले जा रहा हूँ अभी।
1: ओके, सो यू यू आर गोइंग फ्रॉम वर्क घर पे?
0: हाँ जी।
1: ओके, रेडियो
0: दफ्तर से घर की तरफ जा रहा हूँ।
1: अच्छा, दफ्तर की। क्यों, क्या करते हैं आप? व्हाट डू यू डू?
0: मैं जानकारी इकट्ठा करके उससे लोगों को मदद करता हूँ।
1: वेरी नाइस। बाप रे, बहुत भयंकर काम करते हैं जो भी करते हैं। समझने वाले समझ गए हैं, जो ना समझे वो क्या है? नाड़ी है मेरी तरह। बट एनी वेज, सो यू लिसन टू द रेडियो एवरी डे और समटाइम्स?
0: नहीं, जब भी गाड़ी पे रहता हूँ तो सुनता हूँ।
1: अच्छा, आप गाड़ी पे रहते भी है? घर पे भी
0: गाड़ी
1: रहते हो?
0: जब
1: गाड़ी
0: चलाता हूँ तो फिर सुनता हूँ।
1: ओके, वेरी नाइस। घर पे नहीं सुनते रेडियो?
0: घर पे नहीं,
1: और
0: घर पे मौका नहीं मिलता है।
1: अच्छा, मौका ही नहीं मिलता है, वो भी बात है। मौके पर चौका कौन मारता है? कोई कोई मिलता है ना जिसको मारने को।
0: भी सभी लोग नहीं मार पाते मौके पर चौका, यही तो
1: प्रॉब्लम
0: समस्याएं हैं।
1: यस। सो आपने कहा था कि आप अभी डैलस मूव हुए हैं, आप कैलिफोर्निया रहते थे?
0: हाँ जी, कैलिफोर्निया में मैं रहता था।
1: बट आप समझ रहे हो, मतलब लोग बोल कर भी ना अपना कान को उल्टा कर देते कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो कहाँ से बट को बट कर रही है। बट दैट्स लवली। सो यू यूज टू नॉट, यू जस्ट केम हियर। तो श्रोताओं, आप जो सुन रहे हैं, इन्होंने मुझे अभी बताया था कि 2 साल पहले वो कैलिफोर्निया से इधर आए थे और वो गर्ल हिंदी खेले थे उस समय, राइट? एंड उसके बाद 2 साल बाद नाउ यू हैव एब्सोल्युटली मूव टू
0: फन एशिया रेडियो सुनने के लिए आया हूँ कैलिफोर्निया से। हम परमानेंटली
1: सुपर,
0: और अपने हिंदी को मजबूत करने के लिए, लेकिन अगली बार शायद मैं जीत जाऊँ।
1: बट न बोलू, बट यू वर सो गुड, आप बहुत अच्छी हिंदी बोले, नो डाउट अबाउट इट। आपने तो कितनी सारी मदद कर दी हमारे डैलस वासियों को, यू नो, विद योर वर्क दैट यू डू। बट अमेजिंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
0: थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर एंड हैव अ ग्रेट rest of the day.
1: Yes.
0: Thank you.
1: You have a great weekend and enjoy your stay in Dallas. I know it will grow on you and you will start loving it more.
0: Sure. Thank you.
1: Have right.
0: a good night. Bye.
1: You too. Bye bye. Good night. Ye dekhiye, aisa hota hai bade bade shehron mein.

ओह माय गॉड, 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं। वैसे आज झीलू राम ने मुझे ये कहा कि नवनीता, पता है आप लोग ना विदेश में सैंडविच खाकर पेट भरते हैं, हम तो जो है देसी लोग, हम यहाँ बैठ कर सैंडविच खा ले, पिज्ज़ा बर्गर खाने के बाद बोलते हैं बस करो, अभी खाना भी बाकी है। झीलू राम, आप अपने आप को देखो, कहा क्या शरीर होता जा रहा है। बट एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो मेरा तो, मैं दिमाग टटोल टटोल के देख ली, इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा। कहते हैं नमिता, एक सवाल है जो मुझे भीतर ही भीतर बहुत परेशान कर रहा है। हम सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं, तो घड़ी वाले को हम क्या कहेंगे? मतलब सिक्योरिटी गार्ड वॉचमैन है तो घड़ी वाला कौन है? आपको पता है? मुझे नहीं पता। 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर, फोन शाही नंबर दबाइए, पता हो तो बताइए।

0: है चौहान का ये गाना एंड दिस वन रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण मटर गश्ती ये सॉन्ग 104.9 FM फन एजा रेडियो सुन रहे। चलिए लेती हूँ मैं अपने एक नेक्स्ट कॉलर को ऑन द रेडियो। गुड इवनिंग, फन एजा रेडियो पर आपका स्वागत है। हाय, हाउ आर यू?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आपका नाम बताइए।
1: मेरा नाम मुकुल सिंगल है।
0: मुकुल सिंगल, वाह वाह, आप सिंगल
1: जी।
0: हैं कि डबल हैं?
1: मैं शादीशुदा हूँ।
0: तो सिंगल, आप फिर भी सिंगल है, गुड, यू कैन गो विद दैट, है ना?
1: ओके।
0: नो नो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप सिंगल हो कर डबल हो भी जाएंगे तो भी सिंगल ही रहेंगे। किसी ने सोचा था ये
1: जो
0: बात?
1: दूसरा नाम है वो सिंघल है, लाइक
0: हाँ, सिंगल
1: एस
0: है।
1: आई एन जी एच
0: एच एल,
1: ए एल, या दैट इज
0: ऑलराइट,
1: लाइक यू नो अग्रवाल में गोत्र।
0: अच्छा, ओके, सिंगल अग्रवाल गोत्र। सबका वक्त शुरू किया जाए, मिस्टर सिंगल,
1: जी
0: योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस मुकुल जी। मुकुल आनंद
1: धन्यवाद।
0: भी बहुत बड़े हैं, यू नो ना?
1: जी।
0: आप वहां से रिलेटेड नहीं है ना?
1: नहीं,
0: ऑलराइट, वेरी गुड।
1: मैं
0: सो
1: राजस्थान का हूँ।
0: आप भी राजस्थान के हो? मेरे कितने रिश्तेदार आ जा रहे हैं, पता है? अभी तक नहीं थे।
1: अरे बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ, वेरी नाइस, थैंक यू, लव इट, है ना? अभी तक लाइक आई थिंक किसी को पता ही नहीं था, है ना,
1: क्या चीज?
0: यही कि रिश्तेदार है।
1: नहीं, पता तो है ही, मतलब जो मेरे जानकार लोग हैं उनको तो पता ही है। आप और मैं आज बात कर रहे हैं पहली बार, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता लगा।
0: अच्छा, वेरी गुड। सो मुकुल जी, क्या कर रहे हैं आप, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं?
1: नहीं, मैं घर पे पहुंच चुका हूँ।
0: और पार्क करके बात कर रहे
1: मैंने
0: हो?
1: जब कॉल लगाना हाँ
0: कॉल,
1: मैंने जब कॉल लगाना स्टार्ट किया
0: कॉल
1: शुरू
0: स्टार्ट,
1: किया था,
0: कॉल लगाना
1: सॉरी,
0: स्टार्ट किया था।
1: नहीं, मैंने मैंने शब्द चुन के रखा था संवाद, लेकिन पता नहीं जब बात करते हैं तो निकल ही जाता है कुछ।
0: मतलब
1: मैंने
0: जब
1: ऐसे दूरभाष से संभाष, मैंने ऐसे सोच के रखा था कि मुझे ये बोलना है जब मैं कुछ बोलूंगा ऐसा।
0: वाह मैन, यही तो होता है, बड़े बड़े शब्द हम रट के बैठ जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं, छोटा सा बट भी निकल जाता है,
1: जी,
0: ओके निकल
1: आप बहुत
0: जाता
1: जल्दी
0: है।
1: पकड़ भी लेती हैं।
0: वो बस मैं, वो गैम्बो मेरे को नाम दिया गया है वैसे डालस में,
1: जी,
0: मैं
1: मुगम्बो
0: कभी कभी अपने को
1: भी
0: गब्बर
1: और शाकाल भी
0: शाकाल भी दिया गया है,
1: और गब्बर
0: करेक्ट,
1: भी। कितने
0: गब्बर
1: आदमी थे, कितने
0: भी।
1: अंग्रेजी शब्द निकले तुम्हारे मुंह से।
0: बट ऑसम, थैंक यू, यू हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड अ
1: थैंक
0: ग्रेट
1: यू,
0: वीकेंड, ओके, धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद जी।
0: यार पता है, मेरे झेलू राम के पास ना आईफोन नहीं था, मौसी ने उनको सलाह दी कि किडनी बेच ले और ले ले अपना आईफोन। पता है अब झेलू राम के पास दो दो आईफोन है पर मौसी नहीं है। सॉरी मौसी जी, मौसी जी, वेरी सॉरी, जोक था यार, सीरियस मत होइए।

0: चाहते रहो 104.9 FM फनी जो रेडियो सुन रहे हैं। पता है ये जो उमर ख्वाजा साहब है ना, वो सबसे खास हैं, क्योंकि अगर आप कोई एक्सीडेंट में फंस गए हो या स्लिप एंड फॉल हो गया हो, दे आर द पीपल हु कैन हेल्प यू। इफ यू आर इंजर्ड इन अ कार ट्रक और स्लिप और फॉल एक्सीडेंट, फोकस ऑन हीलिंग वाइल अटर्नी उमर ख्वाजा फाइट्स फॉर यू। आपको पैसे कोई देने की जरूरत नहीं है जब तक कि आप जीत जाए। फोन उठाए, नंबर दबाए, उन्हें कॉल कीजिए 469-300-5046 या फिर विजिट कीजिए अटर्नी omar.com। सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो मेरे साथ। जी एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाने वाले हैं, लेकिन मैं अपने एक लिसनर को ऑन एयर ले लेती हूँ क्विकली। गुड इवनिंग फन एशिया रेडियो, स्वागत है आपका गल हिंदी हिंदी बोल पर।
1: शुक्रिया बहुत बहुत।
0: या आपने क्या स्पीकर फोन हटाते हुए कितनी सारी आवाजें पैदा कर ली।
1: I'm so sorry.
0: आपका वक्त शुरू होता है अब, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। I'm going into a break. So, नाम बताइए।
1: मेरा नाम है अहमद।
0: अहमद साहब ओके, तो आप क्या स्पीकर फोन पे ही रहना चाहते हैं?
1: अरे मैंने तो निकाल दिया है स्पीकर फोन।
0: अभी स्पीकर भी फोन भी दोनों ही तो अंग्रेजी है सर।
1: ओह माय गॉड
0: ये तो एकदम ही हिंदी था। थैंक यू सो मच। यस बट हैव अ वंडरफुल इवनिंग। मैं नहीं फसाई हूँ, बट आप यू हैव अ वंडरफुल वीकेंड। ओके दोस्तों, आपके ही मन जाएगा। आधे घंटे और है मेरा साथ आपके साथ ऑन दिस अमेजिंग फ्राइडे इवनिंग, जो हम दिल से कहते हैं बिकॉज द फ्राइडे वाइब इज ऑन, द वीकेंड वाइब इज ऑन व्हेन द फ्राइडे इवनिंग शो इज ऑन।

0: सुनते रहिए मुझे और आधे घंटा।
1: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
2: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
4: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
5: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
6: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
7: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
7: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
6: और एंटरटेनमेंट,
7: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
6: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
7: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: होचो,
11: होको,
10: होचो,
11: होको,
10: होचो,
11: इट्स होको।
12: अरे बस भी करो यार।
11: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
12: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है, एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करी, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Panacea.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
9: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
16: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
9: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फन एजा रेडियो पर। 5 से 9 है आज का साथ, 5 से 8 की जगह, और मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता। ये वक्त स्वाति का शो होता है 8 से 9, बट आज मैं उनके जगह एक घंटे आपका मनोरंजन करने की कोशिश कर रही हूँ। किसी ने कहा पुराने ज़माने के लोग ना बातों बातों में ताना मारते थे, आजकल उल्टा ही है। आजकल के लोग सीधा स्टेटस डाल देते हैं, समझदार समझ जाते हैं, बाकी पूछते फिरते हैं यार ये किसके लिए था, किसके लिए था।

0: अमिताभ बच्चन एंड फरहान अख्तर इन देयर बेस्ट. ओह माय गॉड, दोनों की आवाजें इस गाने में सुपर. आई रियली लाइक दिस सॉन्ग. वजीर फिल्म से है अतरंगी यारा. दोस्तों यारी की बात आए तो वो भी यार है जो आपको हेल्प कर दे कुछ अच्छे आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. लेड बाय CPA सुधीर पाए, माय टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड रियल एस्टेट ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग. आप विजिट कर सकते हैं mytimeequity.com या फिर फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4697021272. मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता. ये जो शाम है आपके और मेरे नाम है. और पता है संडे हमेशा टेंशन होती है कि यार कल मंडे है, ये दिन निकल जाएगा कल मंडे है. लेकिन असली खुशी तो आज शाम को है कि कल सैटरडे है और परसों संडे है. ये थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. बस बने रहिए इस शो पर ऑन दिस अमेजिंग इवनिंग. बट बिफोर दिस सॉन्ग चली लेती हूँ मैं अपने अगले कॉलर को ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल. गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: हाँ कैसे हैं आप?
0: एकदम फर्स्ट क्लास. आप कैसे हैं?
1: मैं मजे में.
0: वेरी गुड, मजे में रहने चाहिए है ना. नाम बता दीजिए मेरे डैलस के लिसनर्स को.
1: सत्या.
0: सत्या, वाओ सत्या. आप पे तो फिल्म भी बन गई, आपका वक्त भी शुरू हो गया. ऑलराइट, आपका वक्त शुरू हो चुका है. यू ओके?
1: या आई एम गुड.
0: ओके फाइन. ओके आई जस्ट वांटेड टू चेक आप या बोले, बट आई विल गिव इट टू यू राइट नाउ बिकॉज़ आई थॉट कुछ तो गड़बड़ है. बट एनीवेज सत्या, योर टाइम हैज स्टार्टेड सो डोंट मेक एनी मोर मिस्टेक्स. ओके
1: ओके
0: ओके बोल दिया फिर से. अब नहीं आपको दिया जाएगा चांस.
1: नहीं या, नहीं मतलब, मौका दे दीजिए.
0: कैसे कैसे एक बार भी किसी को ना आज कर. मेरा नाम आपको पता है ना, वो गैम्बो से शुरू होके गब्बर तक पहुंचता है और बीच में शाकाल भी एडेड है. उसके बावजूद मैंने आपको एक चांस.
1: मैं गाड़ी चला रहा था तो कुछ लग गया गाड़ी को, इसलिए मैं देख रहा था.
0: यस सो आई एम सॉरी, इसलिए मैंने पूछा था आर यू ओके, बट आई होप यू आर. प्लीज ड्राइव सेफ, कोई इधर से उधर ध्यान में नहीं डालना चाहिए. ओके बाय बाय. Have a wonderful weekend.
1: You too,
0: bye. I just caught him at the wrong time, but you be safe, guys. Game hai.

गुडबाय फिल्म से लिया गया, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। एंड दिस वन नीना गुप्ता भी थी इसमें विद अमिताभ बच्चन, रश्मिका मंडाना वाज आल्सो इन दिस मूवी। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक ऑलरेडी सो ब्यूटीफुल। और मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता। ब्यूटीफुल से एक और पेज थ्री याद आ गया मुझे, फ्रॉम सिजलिंग कबाब्स एंड फ्लेवरफुल चाट टू फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स। ओह माय गॉड, मज़ा ही आ जाता है। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है पेज थ्री इटरी एट हबमान 21, अगर अभी तक आपने नहीं किया है इसे एक्सपीरियंस, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। पेज थ्री तो जाना ही बनता है। दिस इज़ वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेवर्स, वेदर इट्स ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट, या फिर फूडी मीटअप भी कर लीजिए। आप सब मिलके जो फूडीज़ हैं बोलिए चलिए पेज थ्री चलते हैं। पेज थ्री ब्रिंग्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स। विजिट पेज थ्री ईटरी एट हब 121। यहाँ पर इतने मज़े आ रहे हैं ना ये गाने सुनकर। एक इसी मूड पर एक और गाना आप ही के लिए ऑन दिस फ्राइडे इवनिंग टू सैटरडे, जो वाइब क्रिएट हो चुका है वीकेंड का, फ्राइडे को ही टोटली शोज यू दैट जिंदगी बहुत खास है मेरे दोस्त।

ये भी एक अच्छी मूवी थी, लापता लेडीज, राइट? आमिर खान प्रोडक्शन से, राम संपत का म्यूजिक एंड अरिजीत सिंह की आवाज़, सुपर डुपर सजनी दैट सॉन्ग। पता है दोस्तों, आपने टेक्सास प्राइमरी केयर का नाम सुना था, दे आर नाउ लुनॉक्सी मेडिकल विद द सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन। आपको प्राइमरी केयर यहाँ मिल सकता है, अर्जेंट केयर, लैब टेस्टिंग, इमेजिंग, कार्डियक डायग्नोसिस, मेड स्पा सर्विसेज, सब कुछ मिल सकता है एक ही रूफ के नीचे। सुबह खुलते हैं 8 बजे सुबह और शाम के 8 बजे तक, वॉक इन्स वेलकम है। तो टेक्सास प्राइमरी केयर इज़ नाउ लुनॉक्सी मेडिकल, ज़रूर जाइए और इफ़ यू नीड देयर सर्विसेज टेक इट फ्रॉम देम। वैसे सुबह उठते ही लोग कहते हैं कि भगवान का नाम लो, और हम हैं पहले टाइम देखते हैं शायद, यस, बिकॉज कितने बजे उठे, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप। भगवान भी सोचते होंगे ना, मेरा नंबर कब आएगा। दिस इज अ सीरीज दैट कीप्स हैपनिंग। बस हम उठ के तो बैठते ही नहीं, पूरा कार्यक्रम होता है हमारा उठने के पहले, उठना या कितना हंसोगे झेलू राम, इट्स ओके।

फ्रॉम द फिल्म धुन की वेरी ब्यूटिफुल सॉन्ग। दोस्तों अब आ रहे हैं सोनू निगम हमारे शहर में विथ एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। सोनू निगम रेवोल्यूशन वन एंड ओनली वन लाइव इन कॉन्सर्ट, बहुत ही अमेजिंग कॉन्सर्ट होते हैं इनके। सैटरडे सितंबर 26 8:30 बजे एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। आपके फेवरेट सॉन्ग्स होंगे, आइकॉनिक वॉइस एंड ऑल लाइव। टिकट्स अभी अवेलेबल है टिकट मास्टर पर। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए 855-360-SHOWS। रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव, एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर्स फाइनेंशियल नेटवर्क। अब गल हिंदी हिंदी बोल नहीं है बिकॉज दैट इज द एंड ऑफ इट, पर झेलू राम ज़रूर कुछ कहना चाहते हैं आपको। वो कह रहे हैं कि कल रात ना मेरा दोस्त गाना गा रहा था, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। फिर क्या था, मैंने पीछे से घुंघरू बजा दी, बेचारा अभी तक बुखार में है। खौश झेलू राम, डरा ही दिया ना।

0: With this beautiful song ending my show tonight, दोस्तों वक्त हो गया है अब मेरे जाने का और बाय बाय करने का फॉर द वीकेंड टिल आई कम बैक नेक्स्ट वीक. जाते जाते ख्याल ये है, पता है, ऑलवेज रिमेंबर एम्प्टी सीट्स आर बेटर देन द रॉन्ग कंपनी. इट्स बेटर टू बी अलोन देन सराउंडेड बाय पीपल हु स्टील योर पीस. सोचने की बात है, दिल पर लगी तो है ठाएं, बट रिमेंबर इट इज़ इन योर हैंड योर पीस. Good night, sleep tight, get up happy, fresh and bright, wishing you a flowerful morning, a colorful noon, a joyful evening and a peaceful night. And I know it's going to be a fabulous day for you tomorrow. Started with a cup of positivity, phir dekhiye din kaisa jata hai. Bilkul positive, kyunki aap attract hi karenge positivity. Jadi jadi bol do, experience Mirage Lounge for premium hookah, delicious bites, cocktails, live music and DJ nights. Enjoy happy hour Monday through Thursday.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
6: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: अजी सुनते हो? सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
0: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में? सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
12: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

0: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
1: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
0: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
1: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
2: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग। Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
1: I'm loving the music.
0: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
2: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
2: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
0: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
4: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

0: अजी सुनते हो?
1: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
2: The OG of Tax Planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: शताब्दी के लिए पक्की है ना महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और खड़ी आ रही है। जय साहब
1: जय हिंद।
0: सात किलोमीटर हो गया, सात किलोमीटर।

0: तो इधर अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िएगा सर, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: गलत बात है। चलो चलो चलो
1: शिव शंभु
0: जय भोलेनाथ। मम्मी शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। ही इज रॉन्ग, वॉच मी।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: आई एम राहत फतेह अली खान एंड यू आर लिसनिंग रेडियो फन एशिया।

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
5: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
4: एंड पिस्ताचियो लैम्ब चॉप्स,
5: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
6: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
7: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
8: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: एंटरटेनमेंट से करते मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: हो गया हमारा रेवेन्यू, डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: एक बार जो मैंने commitment कर दी,
4: तो फिर सिर्फ Fun Asia ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
1: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
3: तुमसे मिलके दिल का है।
1: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
4: Hi, this is Madhavan, and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, टैलिस्मैन रेडियो का डैड, फनी शो 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

baja baja.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
3: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
2: Fikar not. We have the perfect solution.
1: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
4: Kya aapko business khareedne ke liye loan chahiye?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Kya aap franchise shuru karna chahte hain?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Kya aapko apne business ke liye working capital ki zarurat hai?
5: Call the SBA Loan Experts.
4: Construction ho ya renovation, business khareedna ho ya refinance karana ho. For all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA Loan Experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
10: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
1: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: Weekend ka plan abhi tak nahi bana. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sub ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं।
6: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
7: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुर्राटा चिकन टिक्का न्यू लव।
6: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
7: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
8: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
14: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
1: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर।
15: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
1: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
15: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
14: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
16: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration, from top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

सुप्रभात दोस्तों, सुस्वागत है मापी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूँ आपके संग संगीता। आपको मेरा साथ रहेगा तकरीबन 12 बजे तक। ले आई हूँ आज एक्सटेंडेड शो ऑन म्यूजिक मंत्र, वेल आल्सो कवरिंग फॉर मधुलिका और आफ्टर 10 AM। सो हियर वी गो, एन एक्सटेंडेड शो ऑफ म्यूजिक मंत्र। बस वही कहते ही, यानी कि एक्सटेंडेड शो कहते ही, यानी कि मेरा साथ आपके साथ आज लंबा होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। और हमेशा की तरह ले आई हूँ आपके लिए एक अनोखी प्रस्तुति, और उम्मीद करती हूँ कि आप देंगे मेरा साथ ऑल द वे अंटिल द एंड ऑफ द शो। इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मॉर्निंग। उम्मीद कर रही हूँ कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और ये मैं कह सकती हूँ दैट आई हैव हैड अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू दिस मॉर्निंग। एंड आज जब मैं गाड़ी चला के ड्राइव कर रही थी, पहले तो खुशी मनाई मैंने कि भाई गाड़ी चल रही है, फिर खुशी मनाई कि द सन इज शाइनिंग ब्राइट एंड द वेदर लुक्स ऑसम ऑल द वे अंटिल यू नो व्हाट, फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज वी आर नॉट इन द हंड्रेड्स एंड देन ऑफ कोर्स इट कूल्स डाउन नेक्स्ट संडे। हाउएवर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आज सुबह उठकर तैयार होकर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने के लिए। आपकी सुबह कैसे जा रही है बताइएगा मुझे, कुछ अच्छा हुआ है बताइए मुझे एट 972235555। आज कल कुछ अच्छा हुआ, वेल दैट्स अ टॉपिक दिस मॉर्निंग, विल गेट इनटू द टॉपिक इन जस्ट अ बिट। इफ यू कैन थिंक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन योर मॉर्निंग और कुछ अच्छा हुआ शेयर करना चाह रहे हैं तो 972235555555 पे बताइएगा।

इतना प्यारा गीत. कहते हैं कि लगता है डर, यू नो, डोंट नो व्हाट विल हैपन टुमारो. वेल, आई टेल यू व्हाट, अगर जो आपके ख्वाबों में कोई घर है तो उसके लिए आपको सहायता की भी जरूरत है, ताकि आप पा सके वो अपना ड्रीम होम. एंड वांट टू टेल यू दैट उसके लिए जो नाम है मेरे पास वो है ड्रीम होम मॉर्गेज, और उनका फोन नंबर है 9722455626. फ्रेंड्स, योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक, क्योंकि ये 1998 से है ना ड्रीम होम मॉर्गेज, ये बहुत सारे परिवारों को हेल्प कर चुके हैं टू गेट द हाउस दैट दे बीन ड्रीमिंग ऑफ. ऑल्सो दे हेल्प विद द पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और मे बी फॉर रीफाइनेंसिंग. वन मोर टाइम, दैट नंबर इज 9722455626, या आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं dreamhomemortgage.com पे. Dream Home Mortgage, making dream homes happen. और आप सुन रहे हैं म्यूजिक मंत्र, जिसमें मैं हूं आपकी संग संगीता. ले आई हूं आज आपके लिए एक खास प्रस्तुति, और इस प्रस्तुति के लिए आपसे पूछ रही हूं, आज कुछ अच्छा हुआ? वैसे अभी सुबह हुई है, a lot of you are just waking up, तो सोचिए कल कुछ अच्छा हुआ था. सोचिएगा और शेयर करना चाहेंगे तो बताइएगा 9722355555 पे.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में.

मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे हैं कि कल कुछ अच्छा हुआ कि नहीं. हाउ वॉज योर डे? आपका दिन कैसा था कल? वॉज इट गुड? वॉज इट बैड? वॉज इट केओटिक? या वो कैटेगरी जिसमें हम सबसे ज्यादा रहते हैं, इट वॉज अ गुड डे, ठीक ठाक था, नथिंग स्पेशल. वेल, आई थिंक वी हैव बिकम वेरी डिमांडिंग अबाउट वॉट क्वालिफाइज एज ए गुड डे. मेरे ख्याल से अब हम सोच रहे हैं कि गुड डे यानी कि कुछ बड़ा हुआ हो, कुछ खास तौर पे हुआ हो, कुछ मेजर हुआ हो, जैसे कि कोई प्रमोशन मिली हो, कोई वेकेशन टू एन एग्जॉटिक प्लेस हुआ हो, या कोई जन्मदिन मनाया, या ग्रेजुएशन हो. व्हाट डू यू थिंक? इज दैट हाउ वी थिंक ऑफ अ डे जहां हम कह सकते हैं आज कुछ अच्छा हुआ? लेट मी नो योर थॉट्स. 9722355555 बताइएगा. You're looking for something major to have happened, right? To qualify for it to have been a good day. Like graduation. Papa kehte hain, bada naam karega.

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है. थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

बड़ा नाम करेंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे और फिर ढूंढेंगे कैसे करेंगे स्ट्रेटजाइज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स और रिटायरमेंट प्लानिंग। वेल, उसके लिए मैं देती हूं आपको एक नाम। वेल, वांट टू टेल यू, इट्स लेड बाय सीपीएस सुधीर पाई, इट्स कॉल्ड माय टाइम इक्विटी एंड दे ऑफर ऑल दीज वंडरफुल स्ट्रेटजीज आई जस्ट मेंशनड। डेफिनेटली विजिट mytimeequity.com टू सी व्हाट सर्विसेज दे प्रोवाइड। और साथ साथ अगर आप कॉल करके बात करना चाहें तो नंबर है 4697021272। दोस्तों सोचिए, कल कुछ अच्छा हुआ था, बताइए, शेयर कीजिए 9722355555 पे। वैसे बर्थडे मनाना वो भी यू नो काउंट डेफिनेटली होता है, व्हाई नॉट, आई मीन इट कॉल्स फॉर अ ह्यूज सेलिब्रेशन।

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका और मेरा साथ रहेगा आज तकरीबन 12 बजे तक। विल डू एन एक्सटेंडेड शो एंड कवर मधुलिका एज वेल। वेल विद दैट सेड, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और हम बातें कर रहे हैं कि आज कुछ अच्छा हुआ। और मैं जानती हूँ कि आज सुबह अभी हुई है, तो ये सवाल इस तरह भी है, कल कुछ अच्छा हुआ? जहन से सोचिए, ध्यान लगा के सोचिए और बताइए मुझे, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू नो व्हाट, सम ऑफ अस थिंक दैट फॉर अ गुड डे इट मींस दैट समथिंग मेजर मस्ट हैव हैपेंड, कुछ बहुत ही खास तौर पे हुआ हो तो ही याद होगा आपको, और उसी को हम कहेंगे वेल बहुत ही बढ़िया दिन था। और मिसाल के तौर पे, व्हाट आर सम मेजर मार्कर्स फॉर अ ग्रेट डे टू हैव टेकन प्लेस? वेल इट कुड हैव बीन अ बर्थडे, ग्रेजुएशन, शादी अटेंड की, खुद की शादी हो गई ऑफकोर्स, बट शादी अटेंड की, समथिंग बिग हैपेंड, यू वर पार्ट ऑफ द वेडिंग, यू हैड फन, और मे बी इवन अ डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट डेफिनेटली क्वालिफाइज फॉर सम ऑफ अस टू से इट वॉज अ गुड डे। दीज प्रीटी मच हैव बिकम मार्कर्स फॉर गुड डेज। पर अगर सोचिए, पर अगर आपने सुबह उठकर अपना रेगुलर काम किया, ट्रैफिक सर्वाइव किया, ग्रोसरी स्टोर चले गए, डिनर बनाया, डिनर खाया, किसी वक्त पे एट सम पॉइंट यानी कि और किसी पॉइंट पर बिना किसी वजह के फ्रिज खोलकर 30 सेकंड्स तक अंदर झांका, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट डे? हाँ, कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ, इट वॉज अनइवेंटफुल, राइट? बट इट वॉज अ सिंपल साधारण गुड डे विद छोटी छोटी खुशियां। व्हाट डू यू थिंक? अग्री? शेयर विद मी 972235।

0: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर
1: छोटी छोटी खुशियां। वेल, ये छोटी छोटी खुशियां हम कैसे पहचानेंगे अगर जो तबीयत ठीक ना हो? पर यू ऑल्सो नो कि इंश्योरेंस नहीं है। नाम सुना है आपने पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का, पर पैशन हेल्थ नेटवर्क में नहीं है। वेल, यू कैन गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ। Now, I'm sure that got a smile on your face. Now, this includes primary care, preventive care, medication management, telehealth, or bhi services included hain. To inhe call kijiye ya text kijiye at 214-666-6259 ya to visit karein passionhealthphysicians.com. I want to tell you, this program is not health insurance. Eligibility restrictions do apply and you want to be aware of those.
2: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: तो अब ये हम बातें कर रहे हैं कि कुछ ड्रामेटिक नहीं हुआ। सो इट वॉज एन अनइवेंटफुल डे, इट वॉज अ रेगुलर डे। यू वेंट टू वर्क, आकर घर पे खाना बनाया, ग्रोसरीज लेकर आए घर आते वक्त, और बस यूं ही ताकते रह गए फ्रिज को खोल के। वेल, यू नो व्हाट, जस्ट वांट टू सी व्हाट्स इन देयर। छोटी छोटी खुशियां। शायद आपने कभी ये सोचा हो कि शायद गुड डे का मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा हो, बल्कि शायद गुड डे का मतलब सिर्फ इतना है कि दिन ठीक था, यू गॉट थ्रू इट। किसी चीज पे आप हंसे, थोड़ा मुस्कुराए, अपनी फेवरेट चाय की कप में फेवरेट चाय पी, किसी के घर पर जाकर मिलाए और किसी से बात हुई, और फिर अपने घर आए, जूते उतारे और कंफर्टेबल हुए। वेल, मे बी दैट काउंट्स। पर ऐसा लग रहा है दैट समहाउ वी हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग अनइवेंटफुल एज इट मींस अनइम्पॉर्टेंट। तो आपसे सवाल है, थोड़ा सोचिए और मुझे बताएं। कुछ और लोग जुड़ चुके हैं हमारे शो से। शो का टॉपिक है आज कुछ अच्छा हुआ, या आप मुझे कल का भी बता सकते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में इस सवाल के जवाब के लिए वी आर लोअरिंग द बार बाय अ लॉट, क्योंकि आज स्मॉल थिंग्स काउंट। थिंक अबाउट इट, स्मॉल थिंग्स काउंट। जैसे कि सुबह के 9 बजे हैं एंड यू हैव रीच्ड द ऑफिस इन टाइम बिकॉज ट्रैफिक कोऑपरेटेड, नो वन कट यू ऑफ एंड देयर वर नो रोड रेज। ऑनेस्टली टू मी, I think that's a strong start. Nobody irritated you before 9 a.m. और याद है मैंने आपको ये कहा था कि for no reason आपने बस refrigerator खोल कर 30 सेकेंड के लिए देख लिया, और जब आपने देखा कि किसी ने आपके refrigerator में actually जो milk का carton खाली था उसे replenish कर दिया, तो wow, isn't that something to celebrate? तब दिल करता है प्यार भरे लव्स में, प्यार भरे बोल में ये गाना गाकर उन्हें सुनाए, राइट? तेरे वास्ते, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, फलक तक ले जाते हैं इस गाने में इनको। अ रीजन टू सेलिब्रेट, राइट?

है ना सही बात कि सितंबर में डालस में सुबह में एक पतली सी जैकेट चाहिए, और दोपहर को दिल होता है भाई गेट इन टू द पूल. इट्स स्टिल क्वाइट हॉट, इट इज लाइक लेट 90s, सो आई वांट टू से इट्स एक्चुअली हाई 90s, एंड टुडे इट्स गोइंग टू गो अप टू 98 degrees. सो थैंकफुल फॉर ऑल दैट इज ऑन आवर साइड. एंड सो मसला ये है कि where do we find the joy? Well, we find the joy in everything we do and everything we find, like that money in an old jacket or in a parking spot. I know a lot of you thinking, parking spot? खुशी पाते हैं जब आप जाते हैं उन दुकानों में, especially those huge discount stores that are so very well known, and on the weekends it is जैम पैक्ड एंड ओवरक्राउडेड. और फिर आपको कभी भी कभी तो पार्किंग स्पॉट मिल जाती है, द थर्ड स्पॉट फ्रॉम द स्टोर एंट्रेंस. वाओ, आज तो पार्टी हो रही है, राइट? पार्किंग स्पॉट व्हेन यू फाइंड इट राइट नियर द एंट्रेंस, यू नो व्हाट यू डू? यू डोंट जस्ट पार्क, वहां पर जाकर आप ना 1 मिनट के लिए बैठते हैं. यू लुक अराउंड एंड यू से वाओ, हाउ लकी एम आई, थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज वी नो दिस डज नॉट हैपन एवरी डे. आज तो भाई पार्टी मेरी तरफ से.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम एक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल state strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: We need to talk.
9: अब क्या हुआ?
8: Nothing. It's not you.
9: Oh no.
8: It's the distance.
9: Distance? We live 10 minutes apart.
8: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
10: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
11: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
12: Call the SBA Loan Experts.
11: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: Beta, 95% आए?
15: हाँ मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
16: मेरा?
14: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
16: वो
17: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: Sathiya!
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
22: तुमसे मिलके दिल का है।
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

Receive a compliment, especially when you were not expecting one. और इसी पर आधारित एक गाना सुनवाऊंगी मैं आपको, बहुत ही प्यारा गाना है, और आपसे कहती हूं कि आप मुझे बताएंगे, चलिए इस गाने में कौन दिखाई देते हैं. एक्चुअली लेट्स मेक इट इवन ईजियर, आपने बताना है कि ये गाना किस फिल्म से है, ठीक है, बहुत ही सरल सवाल. और आपने पाना है एक चांस टू विन $10 ऑफ ऑफ अ बिल ऑफ $50 व्हेन यू डाइन इन. दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू डाइन इन. और ये है आ रहा आपकी ओर चंडीगढ़ बाइट्स की ओर से. और चंडीगढ़ बाइट्स, दे आर लोकेटेड इन एलन एंड दे आर ऑल्सो ऑन chandigarhbites.com. यू आर गोइंग टू एंजॉय multiple dishes from North India that are going to leave you tempted. It's super inviting. And want to tell you that they also have a special thali Monday se lekar Friday tak. Usme exciting new dishes hoti hain har roz, aur ye hota hai lunch pe. So I could give you a lot of information now. Now I'm going to give you a chance to win $10 off of your bill of $50 or more for dine-in only at Chandigarh Bites. अगर आप मुझे बताएंगे स्टूडियो के नंबर पे कि ये गाना किस फिल्म से है, 972-235-5555 is the number, and we are talking about small tiny wins.

0: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, here everything is better.
1: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
2: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, but chili paneer bao, kahani mein twist.
3: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
2: And pistachio lamb chops?
3: Full on flavor ka fusion.
4: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
5: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
6: सिंपल बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
6: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
7: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
9: ये तारा वो तारा हर तारा।
10: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
11: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
12: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
13: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
14: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
6: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
14: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
6: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

0: ये फिल्म, इस फिल्म को कौन नहीं पहचानता. व्हाट अ पॉपुलर फिल्म, हार्ट वार्मिंग काइंड ऑफ फिल्म दिस वाज. फिल्म का नाम डियर जिंदगी. आर्टिस्ट थे इस फिल्म में शाहरुख खान और उनके साथ आलिया भट्ट. आई वुड से दिस वुड बी वन ऑफ आलिया भट्ट सिग्नेचर फिल्म्स. व्हाट डू यू थिंक? लेट मी नो. Well, I want to tell you right now, though, we are very excited to announce that Mr. Rajinikanth is the winner to the gift card to Fun Pizza Kitchen in Frisco. Congratulations for that. We really love it that you guys call and participate in our trivias and giveaways.
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: तो दोस्तों सुन रहे हैं आप म्यूजिक मंत्र एक्सटेंडेड शो ऑल द वे अंटिल क्लोज टू नून एंड आई एम कवरिंग इन फॉर मधुलिका एट दिस टाइम. और आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और सवाल से जुड़ा हुआ टॉपिक है. सो द टॉपिक इज बेसिकली आई एम आस्किंग, कल या आज आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है? And we're talking about those big celebrations, but also those small, small, small wins. And sometimes, you know, really, it's just a very simple, regular, some call it mundane life. Here, give this thing a little, you know, what I'm going to say next needs a little bit more attention. So stay with me, because now here is where I want us to have a little fun. Because sometimes a regular, an ordinary moment becomes much more exciting. So, सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका फेवरेट गाना आता है, and you turn the volume up, and suddenly you realize you are elsewhere, you're transported somewhere, and not to that regular grocery store you were going to. Now, you are in a Bollywood road movie. I know the film Zindagi Na Milegi Dobara kind of comes to your mind, right? Bahar dekh rahe window se, you're opening the, you know, if you are in a convertible, of course you're opening the, but otherwise you're just keeping the windows open, and that gives you a different feeling. You're thinking deep thoughts. You are enjoying the energy. You're having a lot of fun. Well, but still, you are actually going to the grocery store, and now you are actually looking for the store entrance. However, for those moments, you were transported somewhere else. Now that is a win, isn't it?
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.
0: अच्छा, एक और वाक्य. ओके, आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं. सो यू गेटिंग रेडी, योर हेयर इज कोऑपरेटिंग, इट्स बिहेविंग, द आउटफिट इज वर्किंग, द ज्वेलरी इज परफेक्ट. और फिर आप ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, एंड यू पुटिंग द फाइनल टचेस, यू नो, वो बिंदी भी आपने लगाई है जो बहुत ही परफेक्टली सूट कर रही है. एंड देन यू आर लुकिंग इन द मिरर एंड सडनली यू हैव एंटर्ड योर ट्रांसफॉर्मेशन मोंटाज, राइट? और फिर बस हंगामा हो गया. इज़न्ट दैट अ विन? थिंक ऑफ इट.

And you are the main character. And, you know, when you are the main character, again, as I said, even the simplest things, the mundane things become super fun and super exciting. And usme ek category hai, jab aap khana bana rahe hain, well, who enjoys? I mean, I know a lot of people who really don't enjoy making that dal, jo ki roz ghar par banti hai. To usko bhi hum exciting bana sakte hain. It can become cinematic. ठीक है ना, यू पुट ऑन सम म्यूजिक एंड फॉर दैट आई से पुट ऑन फनीशिया रेडियो, या इफ यू वॉन्ट टू बी रियली फिल्मी एंड मेक इट सिनेमैटिक टू दैट एक्सटेंट, सिंपली चॉप एन अनियन ड्रामेटिकली. आई नो रोने के नाम पे हंसी भी आ रही है. वेल, दैट इज हाउ यू ब्रिंग दैट फिल्मी स्टाइल आउट एंड दैट इज वेयर यू बिकम द मेन कैरेक्टर और रादर यू सडनली आर द हीरोइन ऑफ दिस फूड फिल्म.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूँ, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूँ।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: वेट, इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं ही रोई
7: हूं। जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
8: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
7: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
8: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
7: और एंटरटेनमेंट?
8: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
7: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
8: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
9: क्या मतलब?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
11: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: आज से आज, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कल हिंदी हिंदी बोल।
14: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
15: Call Navneeta Khemka at 347-449-4242.
16: फोन उठाइए, नंबर दबाइए 347-449-4242।
17: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स और ओल्डर टू गेम।
18: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो।

पता है क्या, जब हम नोटिस करते हैं ना ये स्मॉल विन्स, ये छोटी जॉयस को, ये बहुत ही बेहतरीन मोमेंट्स को, तो बेसिकली दैट जॉय जस्ट मल्टीप्लाइज बिकॉज वी आर नाउ नोटिसिंग इट. विद दैट सेड, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस प्रस्तुति को आपने उतना ही पसंद किया जितना मुझे अच्छा लगा आप तक ले आने के लिए. ले आऊंगी फिर एक बार एक अनोखी प्रस्तुति अगले सैटरडे ठीक 8 बजे. तब तक के लिए मुझे यानी कि संगीता बच्चानी को दीजिए इजाजत. साइनिंग ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर.

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: प्रवीण, व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? देखो, तुम्हारे पास दो दिन है
1: सर। वो
0: अगर अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं लाए ना, देन आई एम सॉरी।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: What would happen to your business if a key owner, partner, or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships, or daily operations be affected? KeyPerson Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga. But chili paneer bao, kahani mein twist.
10: Chicken tikka, purani mohabbat. But burrata chicken tikka, new love.
9: And pistachio lamb chops?
10: Full on flavor ka fusion.
11: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
12: Sadia. कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
13: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
8: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
14: तुमसे मिलके दिल का है।
13: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
8: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

दिस इज KZM पे 104.9 FM फनेश रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू जी दोस्तों आपका हमारा साथ होगा 3 बजे तक जहां पे 2 बजे तक आपके लिए गाने प्रस्तुत करूंगी थीम बेस्ड गाने होते हैं कभी कभार हम किसी कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं किसी एक शब्द पर आधारित गाने होते हैं किसी एक विषय की फिल्मों की बातें और बहुत सारे ऐसे सेगमेंट एवरी सैटरडे टिल 2 PM और 2 से 3 के बीच में प्रस्तुत करती हूं मैं आपके लिए कम्युनिटी राउंड अप जी हां जहां पर हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारी जानकारी कम्युनिटी की कुछ अपकमिंग प्रमोशंस तो मैं नहीं कहूंगी लेकिन कुछ अपकमिंग इवेंट्स होते हैं नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज होती है उसकी बहुत सारी बातें हम करते हैं यहां पे टिल 3 PM एवरी सैटरडे आज एक खास कलाकार को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उनकी कला को उनकी फिल्मों को और उनके गाने सुनेंगे हम 2 बजे तक टिल ऑन 104.9 FM फनेश रेडियो विथ मी योर होस्ट नीलम एवरी वीकेंड एंड दैट इज फनेश रेडियो

जी पहले गाने से ही इतने सारे कॉल्स और मुझे बताया गया कि कौन से कलाकार है जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं आज. जी बिल्कुल, 9th of September एंड दैट इज 1967 में जन्मे थे अक्षय कुमार. उनके बहुत सारे गाने आप सुनेंगे 2 बजे तक मेरे यानी कि नीलम के साथ, और कुछ ऐसी ही बातें होगी उनकी फिल्मों से लेके उनके करियर से लेके, कुछ आपसे भी सवाल पूछेंगे. भाई ऐसे थोड़ी हम आपको सिर्फ ड्राइव ही करते देने देंगे, आपको कॉल भी करना होगा, हमारे गाने भी सुनते हैं, लेकिन हमें कुछ जवाब भी देंगे आपके ढेर सारी बातों के साथ. मैं हूँ नीलम, रहूँगी आपके साथ टिल 3 PM. और चलते हैं दूसरे गाने की तरफ, और मैं सोच रही हूँ कि आपको एक सवाल पूछ ही लेती हूँ, तो पूछूंगी, लेकिन एक दो गाने और सुन लेते हैं, उसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगी. उनकी जिंदगी के बहुत कुछ बातें होगी, उनकी फिल्मों की बातें होगी टिल 2 PM.

टशर जी हाँ, उस फिल्म से सुना आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत। और अक्षय कुमार की मैं बात कर रही हूँ जी, बिल्कुल 9th of September उनका जन्मदिन। लेकिन देखिए, आपकी और हमारी जो मुलाकातें होती है वो सिर्फ वीकेंड्स होती है, राइट, सैटरडेज एंड संडेज। और सैटरडेज एक ऐसा ही दिन होता है जब हम आपके लिए थीम बेस्ड गाने लाते हैं, कलाकार को सेलिब्रेट करते हैं वगैरह वगैरह। तो हमने सोचा कि चलिए, थोड़े से लेट है, आई नो इट इज़ 12th of September टुडे, लेकिन देर से आए दुरुस्त आए। हम हमेशा हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके बर्थडे जो होते हैं, उनकी जो बातें होती है वो सेलिब्रेट करते हैं इन द वीकेंड। और सौगंध फिल्म से उन्होंने अपनी फिल्म की करियर की शुरुआत कर ली थी। और बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार है जो सुबह 4 बजे उठते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली वेक अप एट 4 o'clock, 4 AM, दैट इज एवरी डे, लेकिन वो उठ जाते हैं। साल में सिर्फ 4 फिल्में देते हैं, और ऐसा है उनका नाम कि जहाँ पे उनके नाम के आगे खिलाड़ी अपने आप ही जुड़ जाता है, एंड दैट इज़ बॉलीवुड के बॉस अक्षय कुमार, जिनकी हम कर रहे हैं बातें। चलिए एक और गाना सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पूछूंगी एक सवाल। बहुत ही आसान होगा ये सवाल, लेकिन धीरे धीरे आपकी आसानी यानी कि थोड़े से सवाल हमारे कठिन होने लगेंगे। तो पहले सुनते ये आसान सवाल, बहुत ही खूबसूरत पहले गीत सुन लेते हैं, उसके बाद होगा पहला सवाल ऑन 104.9 FM फनी एशिया।

0: हमारी चाहतों का मिटना सकेगा फसाना भी, बिल्कुल अच्छी चाहत और सच्ची चाहत का फसाना जो होता है वो कभी भी नहीं मिटता। तो चलिए मैं कुछ आपके लिए आसान सवाल लाई हूँ। पहला सा सवाल जो है वो बहुत ही आसान है कि हमारी जो फिल्मी दुनिया है वहाँ अक्सर ये देखा गया है कि लोग नाम बदल देते हैं कोई भी वजह हो। कभी कभार लगता है कि नहीं ज्योतिष ने कहा कि ये नाम अच्छा है, कभी कभार लगता है कि नहीं ये नाम फिल्मी ज़्यादा लगता है, बहुत ही सिंपल नाम हो तो हम बदल देते हैं वगैरह वगैरह। तो हम सभी जानते हैं कि अक्षय कुमार का नाम अक्षय कुमार नहीं है, उनका असली नाम कुछ और है। आप मुझे बताएंगे उनका असली नाम क्या है, और अगर आप उनके पीछे की कहानी जानते हैं तो बढ़िया क्या बात है, लेकिन कहानी नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि आप क्या हमें बता सकते हैं कि उनका असली नाम क्या है। 104.9 FM फनेशिया रेडियो, मैं हूँ नीलम, आपके साथ लूँगी कुछ कॉल्स और यही है आपको बताना उनका असली नाम। दैट इज़ नॉट अक्षय कुमार, जी नहीं, अक्षय कुमार उनका असली नाम नहीं है। एंड वेन यू कम ऑन एयर प्लीज़ आपके रेडियो की आवाज़ बिल्कुल कम। फनेशिया यूर लाइव ऑन एयर, रेडियो की आवाज़ प्लीज़। यस सर, एंड
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड सर, गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। बताइए क्या है आपका जवाब?
1: राजीव भाटिया।
0: राजीव भाटिया, और आप उनके पीछे की कहानी जानते हैं सर कि क्या है कहानी जहां उनका नाम बदल गया?
1: नहीं, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। पहले बैंकॉक में मार्शल आर्ट सिखाते थे।
0: जी जी जी।
1: और वो थोड़ा मार्शल आर्ट सिखाते वक्त वो रेस्टोरेंट में भी काम करते थे।
0: अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपका नाम आपने क्या बताया?
1: मेरा नाम हिरण्य।
0: अरे हिरण्य जी, बहुत अच्छा नाम है आपका, वेरी गुड नेम।
1: थैंक यू
0: सर। एंड फनेश, आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो,
2: हे, कैन यू हियर मी?
0: Yes, I can hear you very clearly. बताइए मैम, क्या है आपका जवाब?
2: अक्षय कुमार's first name was राजीव भाटिया।
0: राजीव भाटिया, absolutely it is. लेकिन राजीव से अक्षय कैसे बन गए? थोड़ी सी मिस्ट्री है ना, बताती हूँ मैं आपको, लेकिन इस गाने के बाद on 104.9 FM.

0: राजीव भाटिया बन गए अक्षय कुमार और उसकी जो कहानी है मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक में बस थोड़ी ही मिनट्स है तो मैंने सोचा कि कहानी है लंबी नहीं छोटी सी है लेकिन फिर भी ब्रेक के बाद, ताकि आप हमारे साथ बने रहे 2 बजे तक। माई टाइम इक्विटी का बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। mytimeequity.com इज द वेबसाइट और यू कैन कॉल देम 4697021272, दैट इज वंस अगेन mytimeequity.com और 4697021272। सिप्पी सुधीर भाई जी, जी हाँ, जो आपको ऑफर करते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज़ अ वेबसाइट, दैट इज़ mytimeequity.com। मैं हूँ नीलम आपके साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी कॉल्स हमारे जारी है ये बताने के लिए कि उनका नाम राजीव भाटिया जी बिल्कुल है, लेकिन राजीव से अक्षय कैसे बने उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि सोचते हैं कि भाई फिल्मी नाम नहीं है, लेकिन राजीव इतना कोई बुरा नाम नहीं था, इट्स अ वेरी गुड नेम, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने अक्षय क्यों कर दिया, ये आपको बिल्कुल मैं कहानी बताऊंगी। बने रहिए हमारे साथ ऑन 104.9 FM फनेश।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
4: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
3: Fear not. We have the perfect solution.
5: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new Weekend Lunch Buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special. 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Huzoor, aapko chunna hoga. Hum ya ye biryani?
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
9: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
12: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy.
16: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: जीनी, हुकम मेरे अका। हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
19: मिराज लाउंज, चलिए मेरे अका। लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
20: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
19: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
20: और एंटरटेनमेंट?
19: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
20: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
19: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रैंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
21: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

और इस बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आप सभी का 104.9 FM फनीशा रेडियो मेरे यानी कि नीलम के साथ। वीकेंड्स में आपका और हमारा ये जो साथ होता है म्यूजिकल मुलाकातें होती है 12 से 3 के बीच में। राजीव हरिओम भाटिया का जन्मदिन भी मना रहे हैं हम आज यहाँ पर और उनकी कुछ कहानियां, उनके कुछ किस्से और उनकी कुछ फिल्मों से करेंगे बातें। लेकिन उससे पहले तारा कमर्शियल एनर्जी को बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और उनका नंबर है 8444282808, दैट इज 4844482808 और यू कैन विजिट taraenergy.com सिंस 2002। जी हाँ, आपकी सेवा में, हमारी कम्युनिटी की सेवा में है तारा एनर्जी विद कम्पिटिटिव रेट्स एंड विद रिलायबल सर्विस। तो अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून किया है, मैंने मेरे ही लिसनर से पूछा था कि भी उनका असली नाम क्या है, तो हमें बहुत सारे कॉल्स आए कि राजीव हरिओम भाटिया है। तो राजीव हरिओम भाटिया से वो बन गए अक्षय कुमार। और जैसे मैंने कहा कि बहुत ऐसे हमारे राइट फ्रॉम 40s और 50s की ये कहानी होती है कि जहाँ पे नाम बदल दिए जाते हैं, राइट। समटाइम्स इट्स नॉट टू फिल्मी, समटाइम्स इट इज़ लाइक ओ टू सिंपल, समटाइम्स इट इज़ फॉर मल्टीपल रीजन, राइट। ज्योतिषी ने कहा है, एस्ट्रोलॉजी की वजह से, न्यूमरोलॉजी की वजह से एंड वॉट नॉट। लेकिन अक्षय कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ था। 1987 में उन्होंने एक कुछ सेकंड्स के लिए कुछ किरदार किया था। ही वॉज जस्ट शोन ऑन द बिग स्क्रीन एज अ मार्शल इंस्ट्रक्टर, जो उन्हें रोल मिला था महेश भट्ट की फिल्म जिसका नाम था आज। और उसमें अक्षय कुमार ने इतना छोटा सा उनका रोल था कि हार्डली लाइक ऐसे आए ऐसे गए ऐसा उनका रोल था। लेकिन उस फिल्म में कुमार गौरव जो थे वो उनके मुख्य किरदार में थे और उनका नाम था अक्षय। वेल, उन्हें कुमार गौरव का जो किरदार था, जो कहानी थी, वो इतनी पसंद आ गई, अक्षय नाम उन्हें बहुत पसंद आ गया और उन्होंने सोचा कि बस अब नो मोर राजीव भाटिया, मेरा नाम हो गया अक्षय और मैं अक्षय कुमार के नाम से जाना जाऊंगा इन बॉलीवुड। और वही हो गया, अक्षय कुमार बन गए। राजीव कुमार भाटिया को छोड़ दिया उन्होंने नाम और बन गए अक्षय।

अमृतसर की गलियों से निकले थे जी हाँ, और पुरानी दिल्ली तक पहुंच गए थे जहां पर होटलों में शेफ और वेटर का भी जॉब करते थे। लेकिन मार्शल आर्ट्स जो था वो उनकी ज़िंदगी की पहली उनकी पहचान थी, एंड दैट वाज व्हाट ही वांटेड टू डू ऑल हिज लाइफ। उन्हें लगता था कि बस मार्शल आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर मैं बन जाऊँगा, एंड दैट्स वाई ही वेंट टू बैंकॉक। ऑल द वे देयर जहाँ पर भी उन्होंने कुछ कुकिंग का उन्हें बहुत ही शौक था, तो वो भी जॉब्स कर लिए, सम और जॉब्स भी कर लिए जस्ट फॉर द मार्शल आर्ट्स। लेकिन क्या मार्शल आर्ट्स से उनकी ज़िंदगी की दास्तान बन गई या उनकी डेस्टिनेशन? जी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, राइट? बस फिल्मों में आ गए और बन गए खिलाड़ी कुमार। 9722355555 आपका और हमारा साथ इस सेगमेंट में 2 बजे तक।

मेरा दिल ही तो है 104.9 FM फनीशिया रेडियो. और आज हम जो बातें कर रहे हैं आप सभी के साथ, अक्षय कुमार की बातें हो रही है. राजीव हरि ओम भाटिया की बातें चल रही है भाई. तो जो 90s में जब उनके कदम रखे थे उन्होंने, बहुत ही संघर्ष भरी कहानी. और जैसे कि मैंने कहा कि देखिए, कभी कभार हम सोचते कि हम कितनी कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन वो सफलता नहीं मिलती. और हमें जाना था कहाँ, पहुँचना था मुंबई, पर चले गए दिल्ली. लेकिन मैं हमेशा इसे ये सोचती हूँ कि हमारी बागडोर जो होती है, चाहे वो करियर की बात है, ज़िंदगी की बात होती है, या एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट अवर लाइव्स, इट इज़ ऑल एंड ऑल, एवरीथिंग इज़ प्री डिसाइडेड. हम बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, एंड दैट इज़ मी, मैं सोचती हूँ. एंड राजीव कुमार यानी कि अक्षय कुमार की अगर हम बात करें तो उनके साथ भी ऐसी ज़िंदगी में ऐसी बात हुई थी कि शायद कहीं ना कहीं उन्हें फिल्में में इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी बात, दिलचस्पी नहीं थी. लेकिन जब किस्मत की कहानी होती है कि कैसे वो मॉडलिंग धीरे धीरे करने लगे थे और मॉडलिंग से उनकी ज़िंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट आया था जहाँ पे उन्हें इंडस्ट्री में मौका मिला. और 1991 में आई सौगंध फिल्म उन्होंने कर ली थी. वो भी कुछ ऐसी कहानी थी कि जहाँ पर वो मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए एक फ़्लाइट उन्हें पकड़नी थी, फ़्लाइट मिस हो गई थी. और जिस फ्लाइट में वो जाने वाले थे वो मिस हो गई थी. तो जब वो एयरपोर्ट पे बैठे थे तब उनकी मुलाकात जो हुई थी ये जो सौगंध के प्रोड्यूसर थे उनके साथ हुई. बातचीत में उन्हें पता चला कि ये तो फिल्म के प्रोड्यूसर है. और ये प्रोड्यूसर साहब को पता चला कि भाई ये तो बहुत ही अट्ठा गट्टा, बहुत ही ये जो खूबसूरत नौजवान है मॉडलिंग भी करता है. तो उन्होंने कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ, 90s की ये बात है, एंड व्हाई डोंट यू कम फॉर ऑडिशन, आप दीजिए आपका स्क्रीन टेस्ट एंड देखते हैं कि क्या होता है. वेल, अक्षय कुमार जो थे वो और जॉब वैसे भी करते थे, मॉडलिंग जॉब भी करते, तो उन्होंने सोचा क्या जाता है, राइट, जस्ट लेट्स ट्राई वंस. अगर नहीं मिली फिल्म तो ठीक है भाई, हमारी ये जो मार्शल आर्ट्स है उसमें क्या गलती है, और ये मॉडलिंग तो चल ही रही है हमारी. उन्होंने हामी भर दी और गए थे वो ऑडिशन में, जहाँ पे उनके सिलेक्शन भी हो गया था. एंड दैट वाज द फिल्म सौगंध जो आई थी 1991. उसके बाद 90s में उन्होंने काफ़ी सारी फिल्म्स की, लेकिन इट वाज खिलाड़ी जो टैग बन गया था उनके साथ. ये गाना सुन लीजिए, उसके बाद एक और सवाल पूछूंगी आपको ऑन 104.9 FM.

0: और खिलाड़ी कुमार जी, बिल्कुल 90s की जब बात करें तो एक्शन की बात हो, रोमांस की बात हो, स्क्रीन प्रेजेंस, ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ वो 90s में धीरे धीरे उभर रहे थे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि खिलाड़ी, हम जानते हैं कि उनके बहुत सारी ऐसी फिल्म बनाई थी, कितनी आपको याद आ रही है, कितनी फिल्म, कितने टाइटल आपको याद आ रहे हैं जहाँ पे उनकी ये सारी फिल्मों में कहीं ना कहीं नाम था खिलाड़ी। 104.9 FM फनीश रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और आप मुझे बताएंगे, जी बिल्कुल आप बताएंगे कि कितनी फिल्म्स के टाइटल या हेडर्स आपको याद आ रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं नाम था खिलाड़ी। एंड ऑफ कोर्स अक्षय कुमार की ये फिल्म्स थी ज़्यादातर, ज़्यादातर आई वुडंट से कि ईच एंड एवरी फिल्म जहाँ जहाँ बॉलीवुड में बनी, लेकिन अक्षय कुमार की बहुत सारी ऐसी फिल्म्स हैं जहाँ पे उनके नाम के साथ खिलाड़ी लगा हुआ है। तो कितनी नाम आपको याद आते हैं, 1, 2, 3, 4, कितने नाम आते हैं, बिल्कुल बताएंगे मुझे आप। एंड फनीश, या योर लाइव ऑन एयर।
1: Hi
0: हेलो
1: there. I
0: हेलो,
1: think the
0: यस सर,
1: names I remember are international खिलाड़ी, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी.
0: हाँ बिल्कुल, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी भी था, और पहला नाम आपने कौन सा बताया,
1: It's international खिलाड़ी.
0: इंटरनेशनल, बिल्कुल, आई थिंक कनाडा में उसकी शूटिंग हुई थी, राइट और इसलिए वो
1: I
0: बन
1: don't
0: गए थे।
1: remember, but we used
0: यस
1: to
0: यस,
1: tease one of our friends with that name, so I remember that.
0: ओह वाह, ओके, सो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है एंड मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी भी है, खिलाड़ी 90s की उनकी फिल्म थी, उसके अलावा भी और भी है। तो जितने भी नाम याद आए बिल्कुल हमें बताइएगा, मैं रहूंगी आपके साथ 2 बजे तक इसी सेगमेंट में ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: मेरे संग यारा खुश रंग बहारा और इतने सारे कॉल्स अभी भी ले रही हूँ मैं, कुछ ऑफ एयर कुछ ऑन एयर। एंड फनीश, यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए क्या है आपका जवाब।
1: हाँ, तो मेरा जवाब है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी इज अनदर फिल्म विद द खिलाड़ी इन द नेम।
0: यस यस एब्सोल्युटली। तो लेकिन कितने टोटल आपको याद आ रहे हैं?
1: आई थिंक इंटरनेशनल खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी, आई थिंक दे ऑलरेडी गिव टू, दिस इज द थर्ड वन।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऑफ एयर भी बहुत सारे कॉल आए, खिलाड़ी तो आपको हम जानते ही है, खिलाड़ी तो अनाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, 786, 420 एंड वॉट नॉट, टोटल 8 फिल्म उन्होंने की थी। एंड यू नो एज अ ह्यूमन बींग मैं भी ऐसी हूँ, आई एम श्योर आप भी ऐसे होंगे, कि फर्ज कीजिए आप कहीं पर इंटरव्यू पर जा रहे हैं राइट, और आपने एक पर्टिकुलर कलर के कुछ कपड़े पहन लिए, रेड ब्राउन ब्लैक वॉट एवर, और वो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा गया, उसी से आपको जॉब मिल गई। इसी तरह से एग्जाम हम देते हैं, तब जो जो पेन से अच्छा पेपर जाता था वही पेन मुझे याद है इस्तेमाल करती थी मैं हर रोज। आई वुड नॉट चेंज दैट पेन कि नहीं भाई दिस इज इट, दिस इज द ओनली पेन आई एम गोइंग टू यूज। तो ये हमारी एक फितरत होती है कि हम बहुत कुछ ऐसे मानते हैं। देर कुड बी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स राइट, कि हमारी जिंदगी में हमें सफलता क्यों मिलती है। ऑफकोर्स हार्डवर्क तो है ही, ईश्वर के आशीर्वाद होते हैं, उसके साथ बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, लेकिन वी एज अ ह्यूमन बींग ये छोटी छोटी बातों में बहुत विश्वास रखते हैं कि नहीं ये नाम रखा तभी ये फिल्म बहुत हिट हो गई। जैसे कि अमिताभ बच्चन मानते थे कि विजय नाम रखूंगा तो मेरी सारी फिल्म हिट हो जाएगी। सो इवन इन बॉलीवुड इट इज़ लाइक दैट कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी इनको लगता है कि अगर ये करेंगे तो हमारी फिल्म बिल्कुल ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। नाउ लुक एट द आयरनी, खिलाड़ी 90s की बहुत हिट हुई थी, यस मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी ठीक ठीक थी, उसके बाद यू नो जितनी भी उनकी फिल्म आई, नॉट एवरी ईच एंड एवरी फिल्म गॉट ब्लॉकबस्टर लाइक जो खिलाड़ी फिल्म थी या मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी जैसी। सम ऑफ द फिल्म्स वर टोटल डिजास्टर, लेकिन फिर भी उन्हें ये पूरा विश्वास था अक्षय कुमार को कि नहीं भाई मेरी फिल्म में खिलाड़ी रखूंगा तो मेरी फिल्म बहुत चलेगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम आपके साथ करते रहेंगे टिल 2 PM ऑन 104.9 FM। जी हाँ, अक्षय कुमार के जन्मदिन को मना रहे हैं, उनके गाने सुन रहे हैं, उनकी फिल्मों की बातें, उनकी ज़िंदगी की भी बातें कुछ होगी, कुछ और भी आपको सवाल पूछूंगी, कुछ और भी आप हमें जवाब देंगे और ढेर सारे कॉल्स होंगे और ये सारी बातें होगी 2 बजे तक। 2 से 3 के बीच में मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ आपके लिए कम्युनिटी राउंड अप, सो कहीं मत जाएगा। और श्री कृष्णा ज्वेलर्स को भी हम याद कर दें, फ्रिस्को में लोकेटेड 4302311111 एंड 10 साल, जी हाँ हमारे डालस में उन्होंने 10 साल सेलिब्रेट कर लिए है। तो आप आपके त्योहारों के लिए या घर में कोई भी माइलस्टोन हो या ऐसे ही बस कुछ खास अगर आपको लेना है, इट इज श्री कृष्णा ज्वेलर्स। कहीं मत जाएगा और भी बहुत सारी बातें, बेहतरीन गाने आपके इंतजार में रहेंगे यहाँ पे ऑन 104.9।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
5: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
6: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
7: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
8: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
9: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
10: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
11: India mein? To yahan jo friends aur relatives hain, wo kaise attend karenge?
10: और यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभालेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
13: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
15: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
17: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
20: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
21: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
20: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

मिला मिला कोई मिला जी, बिल्कुल हम भी आपको मिल गए हैं और आप हमें मिल गए हैं ऑन 104.9 FM फनीशिया। मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड, दैट इज 12 से 3 के बीच में ऑन सैटरडेज एंड संडेज 2 बजे तक। आज आपका और हमारा जो ये म्यूजिकल साथ है उसमें 2 बजे तक हम आपके लिए अक्षय कुमार के गाने लाए हैं, उनके जन्मदिन को मना रहे हैं और बहुत कुछ उनकी जिंदगी की बातें कर रहे हैं। उनका नाम उन्होंने क्यों बदला से लेकर वाई खिलाड़ी ऑलवेज राइट, और उसकी भी हमने बहुत सारी चर्चा है यहाँ पर कर दी ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो। मोर देन 30 ईयर्स, सोचिए ज़रा कि 90s से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत कर ली थी। एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी, सारे सारे रोल्स उन्होंने किए हैं। एंड ऑन दैट नोट एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी उनके को स्टार्स के लिए, लेकिन उससे पहले हम उमर ख्वाजा को याद कर लें जी। बिल्कुल, कभी कभार जिंदगी में छोटी मोटी दुर्घटनाएं हो जाती है और उस दुर्घटना में अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई सपोर्ट हो राइट, मेंटल एंड हेल्थ सपोर्ट तो होती ही हम पाते, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर इंश्योरेंस तो ये है आपके लिए एक ऐसी मदद जहां पर आप कॉल कर सकते हैं एंड यू डोंट हैव टू पे अंटिल यू विन। दैट इज 4693005046 4693005046। तो attorneyomar.com इज अ वेबसाइट एंड मैं आपके लिए एक सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन चलिए पहले सुनते हैं गीत और को स्टार्स के लिए कुछ पूछना चाहूंगी। जैसे कि मैंने कहा था कि 30 साल, सोचिए जरा कि 30 इयर्स इफ यू आर इन द सेम इंडस्ट्री, इन द सेम ऑफिस, अगर आप एक ही ऑफिस में आपने काम किया होता, कितने सारे लोग आते हैं जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, न्यू कमर्स एंड देन यू लीव। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्स होंगे, स्टार्स में कह रही हूँ जी, बिल्कुल आपके कलीग स्टार्स ही है ना, अगर आप स्टार है तो कुछ ऐसे कलीग्स होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत बहुत बार उनके साथ काम किया होगा बहुत सालों तक। तो यही उसी नोट पे एक सवाल पूछना चाहूँगी, लेकिन इस गाने के बाद ऑन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।

0: अक्षय कुमार के जन्मदिन को मना रहे हैं, उनकी फिल्मों को मना रहे हैं, उनकी कला को उनकी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम यहाँ पे ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो। और जैसे कि मैंने कहा 30 ईयर्स, आई थिंक 30+ ईयर्स, नॉट ओनली 30 ईयर्स, अर्ली 90s में उन्होंने जब अपनी करियर की शुरुआत कर ली थी, इट वॉज 1991। सो तब से लेकर आज तक वो फिल्में कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है सोच के कि मेल को स्टार की बात हो या फीमेल को स्टार। नाउ आई एम सेइंग को स्टार डजेंट हैव टू बी लाइक के, जैसे कि अमिताभ बच्चन और दीवार में साम सामने शशि कपूर थे। व्हेन आई से को स्टार, कोई भी एक ऐसा कलाकार जो उनके साथ फिल्मों में काम कर रहा है, राइट? तो आपको सोच कर ये बताना होगा कि उनकी इतनी लंबी करियर में, इतने लंबे बॉलीवुड करियर में सबसे ज़्यादा उन्होंने किस मेल को स्टार के साथ। फीमेल का एक्चुअली मैं पूछ सकती हूँ, इफ़ यू रिमेंबर यू कैन ऑल्सो से दैट, बट आई एम ट्राइंग टू गेट मोर आंसर्स फॉर मेल को स्टार, कि मेल ऐसे कौन थे कलाकार। कलाकार मैं कह रही हूँ, नॉट अगेन एज आई सेड इट डजेंट हैव टू बी अ हीरो हीरो कैरेक्टर, कि भाई हीरो ही होने चाहिए उनके सामने, एक और विलन है या हीरो, इट हैज कुड बी एनीथिंग। जस्ट एज अ को एक्टर उनके साथ सबसे ज़्यादा किसने काम किया है, ये बताएंगे मुझे आप 104.9 FM फनेशा रेडियो पे। और अगर आप फीमेल को स्टार का नाम जानते हैं तो फीमेल को स्टार का भी बता सकते हैं, लेकिन मेल का सोचिए आप। आई डोंट वॉन्ट यू टू थिंक ट्वाइस, राइट? एक ही बात सोचिए आप, मेल को स्टार का ही सोचिए एंड फीमेल की बातें करेंगे बाद में। एंड फनेशा, योर लाइव ऑन एयर।
1: हेलो, हाँ नीलम जी, कैसे हैं आप?
0: बस ठीक हूँ सर, आप कैसे हो?
1: जी बढ़िया, सोहेल एंड मारियम, वी आर जस्ट ट्यून्ड इन, वी आर लिसनिंग, वी आर हैप्पी।
0: यू आर हैप्पी, यू आर ऑलवेज हैप्पी सर। वो कहते हैं अहमदुल्ला, राइट? दैट इज द वर्ड, अहमदुल्ला। जी बताइए सर, बट आपका क्या जवाब है?
1: आई थिंक द आंसर शुड बी परेश रावल एज फार एज आई नो, बिकॉज काफी मूवी है, ओ गॉड, ओ माय गॉड है, हेरा फेरी है, सो आई थिंक ही इज वर्क्ड क्वाइट अ लॉट विद परेश रावल।
0: ऑल राइट, आई विल टेक दैट, थैंक यू। एंड पनेश, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: हेलो, हाय।
0: हेलो, यस सर, यू आर लाइव ऑन एयर, बताइए।
2: आंसर इज अन्ना, सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी के साथ भी बहुत काम किया है। जी बिल्कुल, मोहरा में वो दोनों साथ थे, राइट? आई थिंक उसके अलावा भी बहुत काम था। थैंक यू सो मच सर।
2: हेरा फेरी
0: कौन सी फिल्म थी उनकी दूसरी?
2: हेरा
0: फेरी, ऑफ कोर्स, हेरा फेरी। एंड फनीश, योर लाइव ऑन एयर।
3: यस यस
0: यस सर।
3: हेलो, माय नेम इज आरिफ।
0: जी सर,
3: माय नेम इज आरिफ।
0: जी आरिफ सर,
3: द आंसर इज सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान के साथ भी बहुत की है फिल्म्स। एंड फनीश, योर लाइव ऑन एयर।
4: हाय, माय नेम इज चंदनदीप।
0: जी सर, क्या है आपका जवाब?
4: आई थिंक परेश रावल हो सकते हैं।
0: परेश रावल हो सकते हैं आपको? yes. मैं जी, थैंक यू सो मच सर। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि कौन हो सकते हैं उनके साथ बार बार दोहराए गए थे।

यही होता है प्यार क्या फ्रॉम नमस्ते लंदन, और आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि नीलम को ऑन 104.9 FM फनेशिया। बातें हो रही हैं आप सभी के साथ अक्षय कुमार के जन्मदिन पर उनके फिल्म्स की। सुबह जैसे मैंने कहा कि उनके साथ को एक्टर एंड एज आई सेड सैफ अली खान जी, बिल्कुल उन्होंने बहुत सारी फिल्म्स की है। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी एंड दिल लगी आई थिंक उनकी थी। अब रिसेंटली एक फिल्म आई है हैवान, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स थी बट नॉट एज मैनी एज ही डिड विद परेश रावल। और जब हम मेल को स्टार की बात कर ले तो जैसे कि मैंने कहा इट डजेंट हैव टू बी जस्ट अ हीरो। कोलोब्रेशन में जहाँ अलग अलग उनके कैरेक्टर्स रहे, हेरा फेरी की अगर आप बात कर ले, हेरा फेरी में कौन भूल सकता है दोनों की पैर को, उसके बाद फिर हेरा फेरी एंड ऑल द वेलकम सीरीज जो थी वहाँ पे भी वो साथ में, भूल भुलैया में साथ में, गरम मसाला इफ यू रिमेम्बर साथ में, ओ माय गॉड में वो साथ में थे। सो ऐसे बहुत सारे कैमियो को अगर आप इवन काउंट कर ले, स्पेशल

0: वेलकम सीरीज जो थी, वहाँ बेबी वो साथ में, भूल भुलैया में साथ में, गरम मसाला इफ यू रिमेम्बर साथ में, ओ माई गॉड में वो साथ में थे। सो ऐसे बहुत सारे कैमियो को अगर आप इवन काउंट कर ले, स्पेशल अपीयरेंस को काउंट कर ले, दैट इज़ परेश रावल। सुनील शेट्टी के साथ भी उन्होंने बहुत काम किया है, सैफ अली खान साहब के साथ भी, एंड विथ अनुपम खेर। यस, अनुपम खेर के साथ उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, लेकिन परेश रावल ले जाते हैं ये अवार्ड, क्योंकि बार बार 20 times, मोर देन 20 times इट इज़ परेश रावल। और अगर आप हीरोइंस की बात करें तो उसमें 90s में बहुत सारे, ऑफकोर्स करिश्मा कपूर के साथ उन्होंने फिल्म्स की थी, लेकिन रिसेंट पास्ट में अगर देखें तो उन्होंने कैटरीना कैफ के साथ बहुत फिल्म में काम किया है, एंड ऑल्सो करीना कपूर के साथ भी उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, एंड दैट इज़ राजीव कुमार भाटिया।
1: This is something special.

0: गीत और बहुत सारे हमारे एक्टर्स जो हो बॉलीवुड की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्षय कुमार ही है कैसे एकलौते कि स्ट्रगल किया और उन्हें सफलता मिली। बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, आप शाहरुख खान की कहानी देख लीजिए, उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रगल किया था, एंड मैनी मैनी एक्टर्स, राइट। लेकिन जो सेल्फ डिसिप्लिन की बातें हैं, लाइक ऐसा नहीं है कि बिकॉज ही हैज सीन द हम्बल बैकग्राउंड दैट्स वाई ही इज सो सेल्फ डिसिप्लिन। आई थिंक इट्स अ वेरी पर्सनल ट्रेट, इट डजेंट हैव टू बी एसोसिएटेड विद कि आपने कितने आपकी ज़िंदगी में दुख देखे हैं, कितने आपने उतार चढ़ाव देखे हैं, हाउ हम्बल यू हैड योर बैकग्राउंड। इट इज़ मोर इन टू योर ओन पर्सनैलिटी इज योर ट्रेट मोर देन एनीथिंग एल्स। और यही बात है, ये जो अक्षय कुमार की बात है, खिलाड़ी कुमार की बात है, कि आज भी एंड नॉट ओनली टूडे, वो अक्सर ये बात करते हैं कि इवन वैन आई वॉज एट माई पीक, कि मैं जब 30s में था या 40s में था, तभी भी मैं कभी किसी पार्टीज में नहीं गया था। ही हैज़ नेवर बीन टू एनी बॉलीवुड ग्लैमरस पार्टीज़। 6 बजे उठने से लेके या 4 बजे उठने से पहले कि जल्दी सो जाना, यही खाना खाना, यही उनकी जो हेल्थ के लिए जो भी उनकी बातें थी, जो डिसिप्लिन थी, जो रूटीन था, दैट हैज़ बीन देयर इवन वैन ही वॉज इन हिज 30s और 20s। सो एज आई सेड कि हम अक्सर कहते हैं कि अरे सफलता उन्हें बहुत ही कठिनाई से मिली होगी, मे बी दैट इज़ अ रीज़न, बट इट इज़ मोर देन दैट। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी जो सेल्फ डिसिप्लिन है, आप किस बात पे मानते हैं, आपके आदर्श क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है, कि वॉट यू रियली वॉन्ट टू डू इट। ही कुड ऑल्सो गॉन टू बॉलीवुड पार्टीज, उन्होंने भी बहुत सारे स्ट्रगल देखे होंगे, उन्होंने उनको भी नेटवर्किंग करना होगा वगैरह वगैरह, बट ही डिड नॉट चूज टू डू दैट। वो हमेशा ही अपने आप में ही रहे और सफलता उन्हें मिलती गई। उनकी बहुत सारी और भी बातें बाकी है, उनके और भी गाने बाकी है। एक और सवाल भी पूछना चाहूंगी उनके ही करियर से आपके साथ, सो कहीं मत जाइएगा, बने रहिए। ये सेगमेंट आपके साथ होगा कुछ और गानों के साथ, कुछ और बातों के साथ, टिल 2 PM, एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप, जहां पर मैं नीलम लाती हूँ आपके लिए बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स एक्टिविटीज की जानकारी। जी हाँ, उसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, और ये सारी बातें होती है 3 बजे तक एवरी सैटरडेज। सो 12 से 3 होता है शनिवार की दोपहर आपका और हमारा साथ, एंड संडेज इट इज 12 to 2 PM, जहाँ पे 2 बजे तक रहूंगी मैं ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो एवरी वीकेंड।
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। लर्न हाउ अ पर्सनल strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
7: ना सब और प्राइस
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा मैं हीरो।
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: Beta? 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
10: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी। सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
11: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: देना।
1: इस मुस्कुराने की बातों के साथ एक बार फिर से प्यार भरा स्वागत आप सभी का ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, सो वेल, मैं हूं नीलम, आपके साथ रहती हूं एवरी वीकेंड। और आज जो बातें हो रही है वो हो रही है अक्षय कुमार के जन्मदिन की, और उनके जन्मदिन से लेकर हमने बहुत सारी उनकी फिल्मों की, करियर की, नाम बदलने की, और ऐसी बहुत सारी हमने यहाँ पर बातें कर ली है। कुछ आपकी राय, कुछ आपके जवाब, आपके ढेर सारे कॉल्स के साथ टिल 2 PM। और एक और सवाल पूछूंगी, कुछ और भी बातें हो, कुछ और भी गाने, उससे पहले हम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर को बिल्कुल याद कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आप भी आपकी हेल्थ के लिए कोई अच्छे से डॉक्टर की तलाश में हैं, जो आपको ज़्यादा अटेंशन दे, जो आपको ज़्यादा ध्यान दे, देन यू कैन डेफिनेटली गो टू अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ फॉर जस्ट 85 a month। एंड दैट इज उनका नंबर मैं आपको दे देती हूँ, 214-666-6259, दैट इज 214-666-6259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com। बातें हो रही है राजीव कुमार भाटिया की, और जैसे कि मैंने कहा इस सेगमेंट में हमने उनके बहुत सारे किस्से कहानियां दोहराए कि क्यों भाई उन्होंने नाम चेंज किया, किन किन के साथ उन्होंने ज्यादा काम किए थे। और यू नो, जो भी एक स्टार होता है, जो कलाकार होता है, वो स्टार जब बनता है तो उनकी जो फिल्में चलती है वो इसीलिए सिर्फ नहीं चलती कि वो स्टार होते हैं। हमने कई बार ये मिसाल देखी है कि जहाँ पर स्टार्स की भी फिल्म डिज़ास्टर हो जाती है, उनकी फिल्मों में भी कुछ हमें लगता है कि कुछ बात नहीं बनी। चाहे आप खान की बात कर ले या कोई और भी कलाकारों की बात कर ले, देर हैज़ बीन फिल्म्स की जो बिल्कुल नहीं चलती, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते जो वक्त के साथ खुद को बदल सकते हैं। अक्षय कुमार ने यही किया 90s में। इफ़ यू रिमेंबर, रोमांटिक फिल्म्स में उन्होंने बहुत सारे रोल्स किए, धीरे धीरे कॉमेडी की तरफ रुख कर लिया, एक्शन रोल्स भी किए, कुछ देशभक्ति की बातें कर ली। तो हर एक फिल्मों में अलग अलग उन्होंने किरदार निभाए। कभी भी ये नहीं सोचा कि नहीं भाई, मैं तो जब आया था अक्षय कुमार बनकर आया था, आई वॉज ओनली डूइंग रोमांटिक फिल्म्स, फिर मैंने एक्शन फिल्म्स की थी तो मैं रोमांटिक से कॉमेडी तक कैसे जा सकता हूँ। सारी फिल्म्स उन्होंने की, बदलाव, एंड एज वी से चेंज इज़ ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन अवर लाइव्स, राइट। जो बदलता है उसी को ये सारी सफलता मिलती है। चलिए ये सवाल सुन लेते हैं, ये गीत सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी कुछ राय लेना चाहूँगी इस गाने के बाद।

0: मेरे यारा मान जाना ऑन वन ऑफ अ फ्रेंड आना फिर फनीश या मैं हूँ नीलम आपके साथ। और जैसे कि मैंने कहा कि बदलाव इवन इन आवर ओन करियर, राइट, वी कीप चेंजिंग आवर स्किल सेट। आई वुड से चेंजिंग, आई थिंक चेंजिंग इज़ द रॉन्ग वर्ड, आई वुड से अपग्रेडिंग। यस, कि भाई ये सर्टिफिकेशन कर लिया, 5 साल हुए, कुछ और करना पड़ेगा वरना वी विल बी यू नो आउट ऑफ द आई टी वर्ल्ड। बिकॉज इन एनी वर्ल्ड, नॉट ओनली इन आई टी, वी नो दैट थिंग्स कीप चेंजिंग। इवन इफ इन द मीडिया वर्ल्ड हो, आईटी हो, सिंगिंग हो, डांसिंग, एनी फील्ड दैट यू आर इन, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप नहीं कह सकते कि 30 साल पहले मैं जब इंडस्ट्री में आया था, आई वॉज डूइंग द सेम थिंग, मैं यही करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट, वी डू हैव टू चेंज, राइट। वही अक्षय कुमार ने किया, उन्होंने बहुत सारे बदलाव लाए अपने करियर में, रोमांटिक रोल्स से कॉमेडी रोल्स की, एक्शन भी की, एंड देन सामाजिक और देशभक्ति की बहुत सारी फिल्में करती, जिसमें मैं मानती हूँ उन्हें बहुत ज़्यादा और भी सफलता मिली। ही वॉज ऑलरेडी अ स्टार, लेकिन उस फिल्मों से वो ज़्यादा बड़े स्टार बन गए, सुपरस्टार। सो मैं अब आपकी राय लेना चाहूँगी कि उनको आपने रोमांटिक रोल्स में, जैसे कि ये गाना जो आप सुना, सच अ ब्यूटीफुल रोमांटिक मेलोडी, मेरे यारा मान जाना, राइट, लेकिन आपने उनको हेरा फेरी में भी देखा है, आपने उनको एक्शन फिल्म्स में भी देखा है, एंड सामाजिक फिल्म भी है, चाहे आप कोई भी उनकी रिसेंट पास्ट की देख ले, देशभक्ति की बातें भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से की है, जैसे कि एयर लिफ्ट वॉज अ वंडरफुल फिल्म। आप मुझे बताइए कि आपको अक्षय कुमार किस रोल में ज़्यादा पसंद आते हैं, जब वो कॉमेडी करते हैं तब, वो जब एक्शन करते हैं तब, या देशभक्ति की बातें करते हैं, सामाजिक हमें जो भी सलाह देते हैं, संदेश देते हैं, तो उसमें आपको वो पसंद आते हैं, लिफ्ट की बात हो, या व्हाट वाज दैट फिल्म मंगल की जो बात थी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर दैट, मिशन मंगल, यस मिशन मंगल की बात थी। सो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज, ऐसे डिफरेंट जोनर की उन्होंने फिल्म की है, लेकिन आप पर्सनली उन्हें किन फिल्मों में ज़्यादा पसंद करते हैं बताएंगे मुझे आप ऑन 104.9 एंड यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: हेलो,
0: यस सर, यू आर ऑन एयर।
1: हाँ, मुझे एक्चुअली अक्षय कुमार एक्शन फिल्मों में या फिर देशभक्ति वाली फिल्मों में ज्यादा पसंद,
0: एक्शन फिल्मों में ज्यादा पसंद आते हैं। डू यू हैव एनी एग्जांपल कि वहाँ पर आपने उनके बहुत सारे एक्शन सीन देखे एंड आप यू रियली लव्ड हिम इन दैट फिल्म?
1: मतलब पुरानी फिल्में थी जिसमें वो एक्शन फिल्म करते थे
0: जी,
1: लेकिन मुझे नाम याद नहीं है उसका।
0: ओके, सो आप उनको अक्सर वही फिल्मों में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, नॉट एनी कॉमेडी रोल्स या ऐसे कोई रोल्स में नहीं पसंद करते ज्यादा?
1: नहीं, वैसे तो वो सारे रोल में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन मतलब जो एक्शन फिल्म में, मतलब उनका चूंकि वो ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो, तो इसलिए उनका ज्यादा वो
0: एब्सोल्युटली। थैंक यू।
1: एक्चुअली मेरे एक सवाल है आपसे।
0: जी सर, बिल्कुल बताइए।
1: जी, हमने देखा कि उनका नाम देखा पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ।
0: जी जी,
1: आपको उनका घर का नाम पता है? पेट में जैसे करिश्मा कपूर का लोलो है,
0: गुल्लू? नहीं पता।
1: मोंटी, मोंटी,
0: मोंटी है। अरे वाह, तो आप उनको मिले थे घर पे? I'm just kidding.
1: नहीं, हम लोग खेलते थे साथ में।
0: ओह रियली?
1: जानता हूँ।
0: नहीं, मैं उनका घर का नाम नहीं जानती। एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? हेलो, एंड यू आर ऑन एयर। आप जब भी कॉल कीजिए, आई नो कि समटाइम्स यू हैव टू बी ऑन होल्ड, बहुत सारी लाइंस होती है, तब आपको लगता है कि पता नहीं नंबर लगेगा या नहीं, बट व्हेन आई से यू आर लाइव ऑन एयर, मीनिंग नंबर लग गया।

केसरी फिल्म से सुना आपने गीत माही रे, और बहुत सारे और भी कॉल्स मैं ले रही हूँ, चूँकि सारे कॉल्स ऑनर नहीं ले पा रही हूँ, वक्त कम है, गाने और भी है, बातें और है, लेकिन इतनी सारी राय रोमांटिक रोल से लेके कॉमेडी, हेरा फेरी इज़ आई थिंक द मेजोरिटी ऑफ द आंसर सब लोगों ने मुझे कहा, बहुत सारे आई वुडंट से सब लोगों ने, लेकिन बहुत सारे हमारे लिसनर्स ने हेरा फेरी कहा कि इट्स वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल टू वॉच हिम, एंड द वे उनकी जो कॉमिक टाइमिंग्स होती है इट इज़ ग्रेट, और इसीलिए उन्होंने बहुत सारी और भी कॉमेडी फिल्म्स की है, खास करके वेलकम की अगर आप बात कर ले, ऐसी बहुत सारी फिल्म्स हैं जहाँ पर उनकी फिल्मों में उन्होंने एक अच्छी कॉमिक सेंस भी दिखाई है। एक्शन तो है ही बिल्कुल, वहाँ से ही उनकी शुरुआत हुई थी, वहीं उन ऐसे ही रोल्स के साथ उनकी शुरुआत हुई थी, कॉमेडी भी उन्होंने की है, रोमांटिक फिल्म्स भी है, नमस्ते लंदन फॉर एग्जांपल, दो तीन और भी कॉल्स आए नमस्ते लंदन के लिए, कि जहाँ पे मुझे भी वो उनका किरदार बहुत अच्छा लगा था, यू नो द वे ही वॉज लाइक कि मैं तो यही हूँ भाई, मैं देसी हूँ, अगर आप मैं लंदन में आ गया डजंट मीन कि मैं देसी से विदेशी हो जाऊँगा, एंड आई विल नॉट ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, इट वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर, और उन्होंने बहुत ही आसानी से वो रोल निभाया था, बिकॉज आई थिंक इवन इन हिज पर्सनल लाइफ एज आई वॉज मैंशनिंग बिफोर कि वो कभी भी बॉलीवुड की जो चकाचौंध है उसमें नहीं गए थे, चकाचौंध पार्टीज़ में, ग्लैमरस पार्टीज़, 3 बजे 4 बजे सोना रात के, एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स की सेट पे लेट जाना, लेट लतीफ़ होना, विच इज़ वेरी कॉमन इन एनी फिल्म स्टार्स की, भाई जितने बड़े स्टार्स होते हैं वो लेट आते हैं, दैट इज़ अ नोशन राइट, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया था, इनफैक्ट कहा जाता है कि इज़ द फर्स्ट वन टू बी ऑन द स्टेज, तो ये सारी बातें स्टेज या सेट जो भी आप कह दें, तो ये जो सारी बातें हैं इट इज़ नॉट ओनली अ ग्रेट स्टार और एक्टर, आई वुड से अ ग्रेट ह्यूमन बींग एज वेल, तो बातें हो रही है उनकी अक्षय कुमार की।

ही दिसदा जी बिल्कुल ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। चाहे आप राजू हेरा फेरी के राजू की बात कर ले, खिलाड़ी की बात कर ले, नमस्ते लंदन के किरदार की बात कर ले, रुस्तम फिल्म की बात कर ले। रुस्तम एक्चुअली इज अ फिल्म जहां पे उनको नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ दोस्तों, एंड यू नो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ये बात बताई थी कि जो सब्जेक्ट या टॉपिक से कोई पहले फिल्म बनाना नहीं चाहते थे। नाउ इफ़ यू थिंक अबाउट इट इन आवर कंट्री, ऑफकोर्स टॉयलेट एक प्रेम कथा की जब आपने कहानी देखी थी, यू मे बी लाइक ये तो बहुत सालों पुरानी बात है, एंड देर आर स्टिल, ऑफकोर्स वी हैव एडवांस सो मच, लेकिन देर आर स्टिल मैनी मैनी विलेजेस विद दिस सिमिलर सिचुएशन। लेकिन इस फिल्म पर, इस बात पर कोई फिल्म बनाना नहीं चाहता था, बट ही डिड। वो प्रोड्यूसर भी थे इस फिल्म के, सिमिलरली पेडमैन हो या वेलकम मंगल मिशन मंगल ऐसे बहुत सारी फिल्म्स है जहाँ पर उनको लग रहा था कि इट इज़ नॉट ओनली, फिल्म्स आर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनिंग, राइट, इट इज़ ऑल्सो टू गिव अस सम गुड मैसेज। क्योंकि बहुत ऐसी बातें होती है जो हम पार्ट पार्ट में नहीं सोचते, लेकिन अगर हम फिल्में देखेंगे तो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, एंड दैट्स वॉट ही डिड। उन्होंने लेटली इतनी सारी फिल्म्स बनाई है एज अ प्रोड्यूसर, उसमें काम भी किया है, जहाँ पर हमारी सोसाइटी को उन्होंने सोचने पर मजबूर कर दिया है विथ अ गुड मैसेज, विथ अ गुड कम्युनिकेटिंग द मैसेज टू द एंटायर कम्युनिटी, टू द एंटायर सोसाइटी। तो ये है अक्षय कुमार, एंड आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी प्लान ऑफ रिटायरमेंट। उनका कोई रिटायरमेंट का प्लान नहीं लग रहा है, वो और भी फिल्में बनाने जा रहे हैं, बनाते गए हैं और काम करते गए हैं। एंड यू नो व्हेन ही केम इनटू 90s इन दिस, ही डिड नॉट हैव एनी गॉडफादर, उनके कोई पापा चाचा मामा मौसी कोई इंडस्ट्री में नहीं था, कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहचान नहीं थी, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों के बावजूद फिल्मों में आना एंड टू डू समथिंग फॉर हिज ओन आइडेंटिटी, अपनी अलग पहचान बनाना, दैट्स अ ग्रेट थिंग, एंड दैट इज़ राजीव कुमार भाटिया, अक्षय कुमार। विशिंग हिम ऑल द बेस्ट, विशिंग हिम मेनी मेनी हैप्पी टर्न्स ऑफ द डे। मैं हूँ नीलम, ये सेगमेंट 2 बजे तक, एंड देन राइट आफ्टर दैट इट इज़ कम्युनिटी राउंड अप। तो बस ऐसी बहुत सारी बातों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे ये सेगमेंट एवरी सैटरडे ऑन 104.9।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: This Shravan, celebrate tradition with little extra sparkle. Shri Krishna Jewelers is celebrating 10 glorious years in Dallas with 10 exciting offers. Enjoy special gifts with qualifying purchases, from silver coins and gold studs to diamond studs and solitaire jewelry. Plus, exciting savings on gold and diamond jewelry. Make this Shravan extra special. Visit Shri Krishna Jewelers in Frisco now through September 17th. Shri Krishna Jewelers. 10 glorious years and countless sparkling memories.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
8: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
9: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
8: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
10: पनीर मंचूरियन का नाम तो सुना होगा, पर चिली पनीर बाओ कहानी में ट्विस्ट।
11: चिकन टिक्का पुरानी मोहब्बत, बट बुराडा चिकन टिक्का न्यू लव।
10: एंड पिस्ताचियो लैम्प चॉप्स,
11: फुल ऑन फ्लेवर का फ्यूजन।
12: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
13: Dawn ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
14: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
15: तारीख पर तारीख।
16: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
14: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
17: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया।
18: हाय, आई एम शाहरुख खान, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया।

दिस इज KZMP 104.9 FM फनेशिया रेडियो पे मैं हूं नीलम आपके साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूं जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। एवरी सैटरडे 2 से 3 के बीच में ये कार्यक्रम होता है आपके लिए, आपके लिए होती है ये प्रस्तुति, आपसे ही बनती है ये प्रस्तुति। जी हाँ, कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी से ही बनती है ये सारी बातें और आपके ही लिए होता है ये कार्यक्रम, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की एक्टिविटीज़ की जानकारी, उसी के साथ हम आपके ही पसंद के कुछ इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल एंड पेट्रियोटिक गाने भी लाएंगे। जी बिल्कुल, तो बने रहिए हमारे साथ 3 बजे तक। कुछ इंस्पिरेशनल बातें भी होगी, कुछ गाने भी होंगे और बहुत सारे इवेंट्स के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं हर शनिवार की दोपहर किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि।

निगम की आवाज में ये पहला गीत सुना आपने इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप। सोनू निगम को लाइव भी आप सुन सकते हैं, जी हाँ, कब? सितंबर 26 at 8:30 PM क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन। तो जरूर जाइएगा, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360-SHOWS, दैट इज 855-360-SHOWS, सोनू निगम लाइव सितंबर 26 at 8:30 PM 104.9 FM फनेशिया रेडियो। यह है आप ही के लिए आपका कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप। कुछ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं हमारे डैलस में, हर वीकेंड होते हैं, वीकडेज में भी भैया अब तो होने लगे हैं। देर आर नॉट थिंग्स कि अभी बस सैटरडे संडे ही हम इवेंट में जाते हैं, वीकडेज में भी जाने लगे हैं, एंड दैट मैनी इवेंट्स वी हैव एवरी वीकेंड एंड वीकडेज में भी। तो चलिए पहले आज से शुरुआत करते हैं, श्री कृष्णा जन्माष्टमी महोत्सव एंड समयो दैट इज फॉर टुडे अर्विंग टेक्सास में आप जा सकते हैं सेलिब्रेशन के लिए BAPS में, दैट इज BAPS स्वामीनारायण मंदिर, एंड दैट इज टुडे सितंबर 4 PM 4 PM सितंबर 12th, और गणेश चतुर्थी इट इज बिगेनिंग ऑन मंडे, जी हाँ 14th ऑफ सितंबर, और बहुत सारे मंदिर अक्रॉस द डैलस फोर्ट वर्थ में, सारे मंदिर में ये इसकी जो अभिषेक है एंड प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, दैट इज़ ऑन सितंबर 14th। ऐसे बहुत सारे और भी इवेंट्स की जानकारी हम आपको देते रहेंगे।

Orichira Young Name P Raja Re on 104.9 FM Fun Asia Radio, and it is your show. जी हाँ, आपसे ही बनता है, आपका ही है ये कार्यक्रम जिसका नाम है कम्युनिटी राउंडअप. अब शो ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर दी एंटायर कम्युनिटी. जी हाँ, एंटायर कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस घंटे के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान, हम आपके बहुत सारे इवेंट्स की जानकारी हमारी कम्युनिटी तक पहुँचाते हैं और उसी के साथ किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि से करते हैं बातचीत ऑन दी एयर. गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन स्टार्टिंग सितंबर 14th एंड इट इज गोइंग ऑन ऑल द वे टिल सितंबर 19th एट श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट इन डालस टेक्सास. दैट इज सितंबर 14th टिल 19th गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन एट स्वामीनारायण गुरुकुल. सितंबर 14th एंड 15th और ये सेलिब्रेशन होने जा रहा है एट राधा कृष्ण टेम्पल इन एलन. जी हाँ, सितंबर 14th सॉरी टिल 25th दैट इज गणेश महोत्सव अष्टविनायक सेलिब्रेशन एंड गणेश चतुर्थी विद स्वामी मुकुंदानंद जी सितंबर 14th एंड 15th. एंड वंस अगेन दैट इज सितंबर 14th एंड 15th 6 PM ऑनवर्ड्स एंड दैट इज एट राधा कृष्ण टेम्पल ऑफ डैलस. उसी के साथ DFW हिंदू टेम्पल, जी हाँ, दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन ऑन सितंबर 14th दैट इज मंडे गोइंग ऑल द वे टिल सितंबर 25th. महाआरती लाइक मुंबई स्टाइल एवरी इवनिंग एट 8 PM 8 बजे शाम को, हर रोज शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स एंड दे विल ऑल्सो हैव आनंद बाजार. ये सारी बातें होने जा रही है एट DFW हिंदू टेम्पल इन इरविंग. अलॉन्ग विद दैट फोर्ट वर्थ हिंदू टेम्पल, श्री रघुनाथ टेम्पल एंड ऑल्सो श्री राम मंदिर इन प्लेनो एंड फ्लावर माउंट हिंदू टेम्पल. All temples are celebrating Ganesh Chaturthi September 14th.

0: पायलट पॉइंट टेक्सास में जो उनकी है एक ब्रांच वहाँ पे, एंड इट इज़ हैपनिंग एट 5 PM टिल 7:30 PM. वंस अगेन इट इज़ 5 PM टिल 7:30 PM एंड जो इवेंट होने जा रहा है दैट इज़ एट पायलट पॉइंट टेक्सास, फ्रीडम पीस एंड डिविनिटी बाय ब्रह्मा कुमारीज डालस. इट इज़ फॉर पीस, डिविनिटी एंड ऑल्सो फॉर फ्रीडम. एंड वंस अगेन सैटरडे सेप्टेम्बर 12th 5 PM टिल 7:30 PM इन पायलट पॉइंट टेक्सास. इसके अलावा कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी चेतना फाउंडेशन के प्रतिनिधि. जी हाँ, एंड दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग इवेंट विच इज़ द पावर विद इन, एंड इट इज़ हैपनिंग फ्राइडे सितंबर 18th दैट इज नेक्स्ट वीक एट 5 PM एंड दैट इज द पावर विद इन बाय चेतना. अगर आप भी इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहे, आपके जितने भी इवेंट्स है, एक्टिविटीज़ है, उसकी जानकारी हम तक पहुँचाना चाहे और आपकी प्रतिनिधि ऑन एयर आकर कुछ बातें करना चाहे, देन प्लीज डू रीच आउट टू अस. दैट इज neelam@oneasia.net. वंस अगेन दैट इज neelam@oneasia.net. यह है आपका कार्यक्रम. जी बिल्कुल, आपके लिए ही होता है ये कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए होता है ये कार्यक्रम. ब्रॉट यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर. इस कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल पूरा प्रयास होता है जहां पर हम आपकी मदद कर सके, आपके इवेंट्स की मदद कर सके. ऑन दैट नोट जी बिल्कुल, नेपाल में जो फ्लडिंग की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोग गुमशुदा है, उनके लिए बहुत सारी प्रेयर्स, हार्ट फेल्ट प्रेयर्स. तो यही सारी बातें अगर आप आज ज्वाइन करना चाहते हैं टू द एंटायर कम्युनिटी, इट इज़ 7 to 8 PM एट रोनाल्ड कर्क पेडेस्ट्रियन ब्रिज एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय विजिट नेपाल. दैट इज़ टूडे बिटवीन 7 and 8 PM.
1: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
2: Call 857-891-8942 today.
3: Dallas has its own superheroes. Fighting dust, clogs, blocked vents, and hidden fire hazards every day. And now, the superheroes of ducts are turning one. Duct Time celebrates its first anniversary in Dallas. For Duct Time services, call Jeetu Patel at 972-877-2500 and book your appointment today for a cleaner, safer, and fresher home.
4: How may I help you?
5: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
4: Fear not, we have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Your dream wedding deserves nothing but the extraordinary. Introducing Lux Wedding Expo, an exclusive luxury bridal showcase happening September 20th, 2026 at Frisco Hall. Discover everything you need to create your perfect celebration. From top designers, photographers, decor, jewelry and beauty experts to stunning venues and tastemakers, all under one roof. Lux Wedding Expo, presented by Flash Brush with Fun Asia Network as the media partner. Want to showcase your brand? Booths and sponsorships are available. Call 972-963-0954 today. Lux Wedding Expo, where your dream wedding begins.

किस्मत की लकीरों को मेहनत से मोड़ दूंगी, क्या बात है। बस ऐसी ही कुछ इंस्पिरेशनल बातें, मोटिवेशनल बातें हम लाते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम के दौरान, एंड दैट इज एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM वनीशा रेडियो विथ मी और होस्ट नीलम। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन एट श्री राम मंदिर इन प्लेनो हैपनिंग September 14th till 18th, 7 PM till 8:30 PM एंड विसर्जन इज हैपनिंग ऑन September 18th, दैट इज श्री राम मंदिर इन प्लेनो। और जैसे कि मैंने कहा 14 सितंबर बहुत सारे मंदिर में ऑल अक्रॉस DFW, जहाँ पर आप DFW हिंदू टेम्पल से लेकर श्री नगुनाथ टेम्पल, श्री राधा कृष्ण टेम्पल, फ्लावर माउंट हिंदू टेम्पल, फोर्ट वर्थ हिंदू टेम्पल और जितने भी मंदिर में आप जा सकते हैं आपके करीबी नेबरहुड मंदिर में, जहाँ पर 14th of September इज़ द फर्स्ट डे एंड अलग अलग मंदिर में अलग अलग डेट्स आर द विसर्जन डेट्स। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स आर हैविंग विसर्जन ऑन 25th of September, विच इज़ द लास्ट डे, लेकिन कुछ मंदिर में 19th एंड 18th आर ऑल्सो द डेट्स फॉर विसर्जन। तो ये सारी बातें हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स पर्यूषण विच ऑलरेडी स्टार्टेड September 8th till 20th of September ये है, एंड स्वप्न दर्शन इज हैपनिंग ऑन 15th of September, सेवन सरीज एक्चुअली ऑन 15th of September एट वेबचेपल टेम्पल, दैट इज जैन टेम्पल लोकेटेड इन वेबचेपल डैलस। वंस अगेन दैट इज पर्यूषण सेलिब्रेशन एंड संवत्सरी सेलिब्रेशन में अगर आप जाना चाहे, दैट इज हैपनिंग ऑन 15th September। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी बिल्कुल हम आपके लिए लाते हैं, लाते रहेंगे ड्यूरिंग दिस आवर। अगर आप भी हमें अब सुन रहे हैं और आपके जो भी कार्यक्रम है, जो भी नॉन प्रॉफिट इवेंट्स है, उसकी जानकारी हम तक पहुँचाना चाहे, देन डू रीच आउट टू अस नीलम @vanesha.net।

और इसी गाने के साथ मैं नीलम लेती हूँ आप सभी से आज्ञा अनुमति जी. बिल्कुल ये है आपका कार्यक्रम सुनते रहेगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन अवर सोशल मीडिया दैट इज फनेशिया कम्युनिटी आउटरीच का है सोशल मीडिया पेज जहाँ पर हम आपके ही कम्युनिटी के इवेंट्स की जानकारी और भी बहुत सारे इंस्पिरेशनल कंटेंट आपके लिए प्रस्तुत करते हैं दैट इज ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. सो प्लीज़ डू फॉलो फनेशिया कम्युनिटी आउटरीच पेज एज वेल एज फनेशिया कम्युनिटी आउटरीच यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप बहुत सारे इंस्पिरेशनल एंड कुछ ऐसे ही इंटरव्यूज सुन सकते हैं देख सकते हैं दैट इज फनेशिया कम्युनिटी आउटरीच की यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: वी नीड टू टॉक।
7: अब क्या हुआ?
6: नथिंग, इट्स नॉट यू।
7: ओह नो,
6: इट्स द डिस्टेंस।
7: डिस्टेंस? We live 10 minutes apart.
6: Are it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance. What would happen to your business if a key owner, partner or top employee passed away unexpectedly? Would revenue, credit, client relationships or daily operations be affected? Key Person Life Insurance can help provide funds to support the business during a difficult transition. Protect the people who help keep your business running. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Benefits and tax treatment depend on individual circumstances. Consult qualified legal and tax professionals. Not legal, tax or investment advice.
9: Sign
10: milna mushkil hai, lekin Plano mein zabardast tha na, uska signature mil gaya. Signature cuisine in Plano. Famous Nihari, sizzling grills, crispy fried chicken or mouth-watering paratha rolls. Aur koi bhi celebration ho, to banquet services bhi. Located at Spring Creek and Alma, East Plano. Visit signaturecuisine.net. Signature Cuisine. Our taste for apna signature.
11: अजी सुनते हो?
12: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
13: The OG of Tax Planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
14: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
14: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
15: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco. 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
8: Happy hours, Monday through Friday from 3 PM to 7 PM.
15: Barista House, richness of biryani bliss.
16: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनेशिया रेडियो 104.9 FM, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले जबर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा, स्वागत करती हूं इस खूबसूरत सी सैटरडे दोपहर में आप सभी का इस बहुत ही खूबसूरत सी शाम में और दोपहर में। आपका और मेरा साथ रहने वाला है 3:30 से लेकर 6 बजे तक। वैसे तो अमरीन जी रहती है आपका साथ देने के लिए, बट अमरीन जी कुछ कारणवश छुट्टी पे गई है, तो इसके लिए मैं आपको एंटरटेन करने आ गई हूँ। मैं बोले तो आपकी अपनी अपूर्वा। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फोगी, गर्मी वाली। और जी हाँ, आज जैसे कड़ाके की गर्मी वाली कैसी भी हो, हमें तो अच्छी लगती है, बहुत ही सुरली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के।

बहुत ही खूबसूरत गाना दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में सुन रहे थे आप, टेकन फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग गाने चलते रहेंगे यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर। जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है उन सभी को बता देती हूँ, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। आज की संडे की शाम में आपका और मेरा साथ रहने वाला है शाम के ठीक 6 बजे तक। अमेजिंग गाने यहाँ पर प्ले हो जाएंगे दोस्तों, तो अगर आपको भी आपके पसंद का कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है, गिव मी अ कॉल, स्टूडियो का नंबर 9722355555। अगले गाने पे जाने से पहले आपको एक बात बता देती हूँ, दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक। सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज हैज हेल्प फैमिलीज नेशन वाइड विद पर्सनलाइज मॉर्गेज सॉल्यूशंस फॉर बाइंग और रीफाइनेंसिंग। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 9722455626, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज dreamhomemortgage.com। ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन।

लवली लवली ट्रैक अलका याग्निक जी की आवाज में सुनी थी आप टेकन फ्रॉम द मूवी साजन। ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत से गाने यहाँ पर चलते रहेंगे दोस्तों शाम के ठीक 6 बजे तक। तो अगर आपको भी ऐसा कोई गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है कीजिए मुझे कॉल। स्टूडियो का नंबर 9722355555। अगला गाना सुनवा रही हूँ आपको आरती के रिक्वेस्ट पर। लीजिए एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों हम छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू 104.9।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, division of Brazos National Bank.
7: अरे वो केक आया क्या?
8: DJ कौन हैंडल करेगा?
7: डेकोर वाले को कॉल किया.
8: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया.
7: Relax. Awesome Events को कॉल किया.
8: Awesome Events?
7: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला, full on concert night. Amreen Hasnat and the team will handle everything.
8: Matlab planning to execution. Tension khatam.
7: Not just that. Book your next event and get free professional emceeing by Amreen Hasnat herself.
9: Call now at 214-725-7466. That's 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
10: Tara wo tara har tara.
11: Arre arre arre. Dallas ke aasman mein itne sare tara nahi. Business owners ke liye तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
12: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सुचाम, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
13: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रियल्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं।
15: तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
19: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
12: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
7: तुमसे मिलके दिल का है।
19: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
12: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
5: इश्क इश्क है।
20: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेजिया रेडियो।

डैलस के धड़कन 104.9 एफएम पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके इस सुरेले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो दोस्तों आपका और मेरा साथ रहता है एवरी संडे की शाम 6 से 8, बट आज ये बोनस का साथ हो गया है आपके साथ, तो आज आपका साथ दूंगी 3:30 से लेकर 6 बजे तक। सैटरडे सितंबर 12, 2026 है दोस्तों आज की तारीख। आज के हमारे शो की कोई वैसे थीम नहीं है, तो अगर आपको कौन सा गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। जो भी गाने रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउ, दैट इज द ओनली कंडीशन। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक।

Lovely, lovely track. Those are Sunita, you have taken from the movie Halchal. रिक्वेस्टों की लाइनें तो दोस्तों लग चुकी है, तो अगर आपको भी आपके कोई गाने की रिक्वेस्ट है और वो लाइनअप करनी है, 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो. अगला गाना बिनिश की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ, इन द वॉइस ऑफ दिलजीत दोसांझ.

दिलजीत दोसांझ की आवाज में सुने थे दोस्तों आप ये गाना फ्रॉम लहंगा। ऐसे ही गाने चलते रहेंगे ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर शाम के ठीक 6 बजे तक। अगले गाने की तरफ जाएंगे बट इससे पहले आपको बता दूं दैट तंदूरी फ्लेम विच इज लोकेटेड इन गार्लन इज द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल द स्पाइस लवर्स सर्विंग अप सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स रिच करीज एंड ऑल योर नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान एवरी प्लेट फील्स like a celebration. Step in today and let Tandoori Flame serve you the kind of meal that turns an ordinary day into a feast. Tandoori Flame Restaurant, which is located in Garland. Agla gana dosto Safi ke request par aap sab ke liye.

सफी के रिक्वेस्ट पर बहुत ही अमेजिंग गाना सुने थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी जवान। ऐसे ही उठपटांग गाने चलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। आपके पसंद का गाना सुना है 9722355555 इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो। गानों का टेम्पो ना थोड़ा सा अच्छा और मीडियम अच्छा और स्लो टेम्पो नहीं है, और गाने जो भी आप रिक्वेस्ट करेंगे इट शुड बी फ्रॉम द ईयर 1990 एंड अबाउ। ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है और वैसे कॉल करना है। स्टूडियो का नंबर 9722355555। ये अगला गाना एक मेरे पसंद का सुन लीजिए, उसके बाद आपके लिए धर्मिष्ठा का गाना चलवाऊंगी।

फेम गेम, ये माधुरी दीक्षित की नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज आई थी दोस्तों, इसमें का गाना है। तो अगर आपने ये वेब सीरीज नहीं देखी होगी तो आई विल डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल टू वॉच इट, बिकॉज क्योंकि बहुत ही अच्छी थी। एक ही सीजन आया था इसका, सीजन टू आने की कगार में है, बट अगर आपने नहीं देखा है तो नेटफ्लिक्स पे द फेम गेम इज द नेम ऑफ द वेब सीरीज। अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, उससे पहले बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशियंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर, सो यू कैन कॉल देम। द नंबर टू कॉल इज 4699429888, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज agfintechs.com। जिन्होंने अभी अभी चुनिंग किया है उन सभी को बता देती हूँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। अगला गाना धर्मिष्ठा की रिक्वेस्ट पर आप सबके लिए।

0: सारी सारी रात जागू रेडियो पे गाने सुनू, छत पे लेट के गिन चुका हूँ जो रोज वो सितारे गिनूं, क्यों न जाने दोस्तों की दोस्ती में दिल ना लगे, सबसे वास्ता
1: You speak English?
0: तोड़ ताड़ के
1: Get out.
0: चाहता हूँ तेरा बनूं अपने फैसले

अमेजिंग अमेजिंग आना दोस्तों, धड़क मूवी से सुने थे आप ईशान खट्टर और जानवी कपूर पे पिक्चराइज थी और सैराट मूवी का ये सीक्वल था। ऐसे ही कमाल धमाल के गाने चलते रहेंगे दोस्तों यहाँ पर ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर, केवल आपकी और मेरी पसंद के। अगले गाने की तरफ चलेंगे और उसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ।
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
3: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: We need to talk.
7: अब क्या हुआ?
6: Nothing. It's not you.
7: Oh no.
6: It's the distance.
7: Distance? We live 10 minutes apart.
6: Arey, it's actually not you. It's that driving all the way for my Sal's Hot Chicken.
8: Irving, that long distance relationship is officially over. Sal's Hot Chicken is now in Irving. Your crispy chicken, loaded sandwiches and bold Sal's flavors just got a whole lot closer. Sal's Hot Chicken, Irving. Same obsession, less distance.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Paneer Manchurian ka naam to suna hoga, par chili paneer bao, kahani mein twist.
13: Chicken tikka, purani mohabbat, but burrata chicken tikka, new love.
12: And pistachio lamb chops,
13: full on flavor ka fusion.
14: That's Fusion Republic Indian Kitchen and Bar. Familiar Indian flavors with a fusion twist. Already loved in Richardson, now the flavor story moves to Irving. Enjoy an everyday lunch buffet with 25 items. Chaats, tandoor, biryani, fusion favorites and plenty more to discover. Fusion Republic now at 8080 Walton Boulevard, Irving. Familiar flavors, fabulous fusion.
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: वेट, इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
20: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है ओनली ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस रिले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली कैसे भी हो, हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही। ऐसे चलते हैं यहाँ पर कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। तो अगर आपके पसंद का गाना आपको सुनना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ पुष्कर के रिक्वेस्टेड गाने की तरफ। उन्होंने गाना रिक्वेस्ट किया था साजन मूवी का और वो हमें सुन रहे हैं फ्रिस्को से। तो ये रहा साजन मूवी का गाना।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

6 बजे तक रहने वाला है हमारा शो दोस्तों। 4:41 हो गए हैं स्टूडियो की क्लॉक में। अभी तो गाने फिलहाल चल रहे हैं कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। 5 और 6 के बीच में, 5 से लेकर 6 बजे तक के बीच में हम ऐसे गाने सुनेंगे रीजनल, जी हाँ रीजनल लैंग्वेज के गाने। तो अगर आपको आपकी लैंग्वेज का गाना कोई रिक्वेस्ट करना है आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। अगर आपको अभी से आपकी रिक्वेस्ट क्विज इन करनी है, क्यू इन करनी है, तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप ये वाला गाना सुनिए। बट इससे पहले आपको बता देती हूँ दैट नो इंश्योरेंस और पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क। गेट अफोर्डेबल प्राइमरी केयर विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, इंक्लूडिंग प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मोर। यू कैन कॉल और टेक्स्ट देम। द नंबर टू कॉल इज 214-666-6259 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज passionhealthphysicians.com. अगेन द वेबसाइट इज passionhealthphysicians.com. दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई।

बहुत ही प्यारा सा गाना दोस्तों अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में सुन रहे थे आप टेकन फ्रॉम द मूवी चलते चलते। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पे पिक्चराइज थी ये मूवी चलते चलते। अमेजिंग अमेजिंग मूवी थी, क्या एक्टिंग की थी भाई शाहरुख खान ने और रानी मुखर्जी दोनों ने भी, और बहुत ही ब्यूटीफुल गाने हैं इस मूवी के। खाली हालत तरह देखो दोस्तों कैसे होता है ना कि शाहरुख खान के जो भी गाने मैंने जब से शाहरुख खान के गाने सुने हैं मोस्टली उनके गाने अभिजीत भट्टाचार्य ने ही गाए हैं, और उनकी आवाज़ शाहरुख खान के कैरेक्टर पर इतनी एप्ट सूट होती है कि अभी भी मुझे अगर है कि शाहरुख खान की कोई मूवीज बनेगी आगे तो उनका आवाज अभिजीत भट्टाचार्य ने ही देना चाहिए गानों के लिए। ये मेरी फीलिंग है, आपकी फीलिंग क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं। वेल 5 बजे के बाद आप सबको बता देती हूँ कि रीजनल लैंग्वेज के गाने यहाँ पर प्ले हो जाएंगे, तो फिर अगर आपको आपके रीजनल लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करना है तो 9722355555 इज नंबर टू कॉल द स्टूडियो। जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और जल्दी से जल्दी अपनी रिक्वेस्ट जो है वो क्यू इन कर लीजिए। 5 बजे के बाद मैं रीजनल लैंग्वेज के गाने यहाँ पर प्ले करने वाली हूँ। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक।

54 मिनट्स पास्ट 4 हो गए हैं दोस्तों स्टूडियो के क्लॉक में। आपको पहले ही कहा था कि 5 बजे के बाद 5 से 6 के बीच में मैं आपके लिए यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज के गाने प्ले करूंगी। तो अगर आपका भी कोई रीजनल लैंग्वेज सुनने का इच्छा आकांक्षा और मनोकामना है आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, मराठी, हिंदी, मलयाली, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी और नेपाली, जो कुछ भी राजस्थानी, जो कुछ भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, आप उसके गाने यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, और वो गाने यहाँ पर जरूर प्ले किए जाएंगे। ये वादा है मेरा आपसे। मैं बोली तो आपकी अपनी अपूर्वा, उसके साथ लेकर चलती हूँ आपको ये इस अगले गाने की तरफ, और उसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद में यहाँ पर चलेंगे रीजनल लैंग्वेज की गानी।

0: आपके सुहाने सफर के साथ ही 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर दोस्तों आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी आरजे अपूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। वैसे तो आपका और मेरा साथ रहता है एवरी संडे की शाम 6 से 8, बट आज ये शाम बोनस हो चुका है और आज बोनस में आपको मिलने वाली हूं और मिल रही हूं रादर सैटरडे की इस दोपहर में 3:30 से लेकर 6 बजे तक। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 5 मिनट्स पास्ट 5 और जैसे कि बोला था मैंने आप सभी को वादा किया था कि 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप सबके लिए रीजनल लैंग्वेज के गाने, आपके रीजनल लैंग्वेज के गाने यहाँ पर प्ले करूंगी। तो अगर आपको भी आपके रीजनल लैंग्वेज का गाना यहाँ पर रिक्वेस्ट करना है आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। बहुत सारे गाने ऑलरेडी लाइंड अप हो चुके हैं तो अगर आपको भी आपकी रीजनल लैंग्वेज का गाना लाइन अप करना है 9722355555। तो सबसे पहले शुरुआत के करने के लिए मैं मेरे रीजनल लैंग्वेज मराठी का ये वाला गाना प्ले कर रही हूँ यहाँ पर और उसके बाद जो भी रिक्वेस्ट आई है उसके गाने एक बार एक प्ले करूंगी। एंजॉय दिस ट्रैक।
1: मितवा
2: फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मित्र, तत्वज्ञ, वाटाड्या।
1: मितवा
2: तू माझी, मी तुझा,

0: प्रेम म्हणजे काय?
1: जे तू माझ्यावर करत नाहीस ते.
2: मस्करी केली.

ब्यूटीफुल गाना शंकर महादेवन की आवाज में सुन रहे थे। दोस्तों आप मराठी मूवी मितवा से अगले गाने प्ले करूंगी, बट उससे पहले आपको बता देती हूँ दैट इफ यू आर प्लानिंग अ वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग और स्पेशल सेलिब्रेशन, लेट वेनेसा इवेंट्स हैंडल द डिटेल्स, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड डेकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड एक्सक्लूसिव केटरिंग बाय बसेरा ग्रैंड। कॉल हरि बसेरा एट 4694428770। Venisa Events, your celebration partner. रीजनल लैंग्वेज का सेक्शन चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो अगर आपको भी आपके रीजनल लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करना है 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट ऑलरेडी आ चुकी है और बहुत सारे गाने रिक्वेस्ट लाइन अप हो चुके हैं, तो चलिए एक के बाद एक आपके पसंद के रीजनल लैंग्वेज के गाने यहाँ पर प्ले करूंगी। तो सबसे पहला गाना गाने की रिक्वेस्ट आई थी मुझे अनिल साहब से, राजस्थानी गाने की, एंड द सॉन्ग नेम इज मूमल। तो चलिए ये वाला गाना सुनते हैं।

लवली लवली राजस्थानी ट्रैक दोस्तों सुने थे हम अनिल साहब की रिक्वेस्ट पर. थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर रिक्वेस्टिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड दिस वॉज अ राजस्थानी सॉन्ग. कितनी भाषाओं की भी कितनी बोली प्यारी होते हैं ना दोस्तों, तो अलग अलग भाषाओं की भी कुछ अलग अलग उनकी खासियत होती है. तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड गिविंग सो मेनी रिक्वेस्ट. तो चलिए अगले गुजराती गाने की तरफ बढ़ते हैं. इस गाने की रिक्वेस्ट आई है हमको चिंतन जी की तरफ से और ये गाना सुनना चाहते हैं. गाने का नाम है अहमदाबाद नो रिक्शा वालो. तो चलिए थोड़ा सा अहमदाबाद की सैर करके आते हैं.

0: અમદાવાદ નો રિક્ષા વાળો, હું અમદાવાદ નો રિક્ષા વાળો, રિક્ષા વાળો.
1: कसम है मुझे तेरे इंजन ऑयल की.
2: अरे मल्हार भाई,
3: असरानी जी.
2: हाँ?
3: अरे क्या जाऊ छे तमने, क्या जाऊ छे?
2: सैटेलाइट.
3: सैटेलाइट?
2: हाँ.
3: तमे हमने जूनू अहमदाबाद बताई तूने.
2: हाँ?
3: हाँ? हवे तमने नव अहमदाबाद बताईशु.
2: चार दीकरा, चार दीकरा.

चलो भाई अहमदाबाद की तो सैर कर आए हम रिक्शा में बैठ के। सॉरी दोस्तों, इतने ही सारे गानों की रिक्वेस्ट आई है ना, तो मैं पूरे पूरे गाने तो प्ले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए थोड़े थोड़े दो दो मिनट के गाने ही आप सबके लिए प्ले कर रही हूँ, सो दैट यू विल गेट द फील ऑफ योर राजस्थानी, सॉरी योर रीजनल लैंग्वेज का फील आ जाएगा आपको। तो अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगले गाने की रिक्वेस्ट आई थी हमें हमिद साहब की तरफ से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, हैदराबादी मरफा। जी हाँ, गाने का नाम ही है हैदराबादी मरफा। तो चलिए एंजॉय करते हैं।

रजनी साहब की रिक्वेस्ट पर गढ़वाली गाना सुन रहे थे दोस्तों आप, ये बेडू पाको। अगले गाने की रिक्वेस्ट है तेलुगु गाने की, तो चलिए तेलुगु गाने की गाना सुन लेते हैं, और गाने का नाम है रेस ग्रम।

0: Well, that was a Telugu song, Race Gurram. अगले गाने की तरफ जाएंगे दोस्तों, उससे पहले एक गिवअवे की बारी है आप सबके लिए. आपको बता देती हूँ that if you're craving the flavors you grew up with, Hoco, जी हाँ Hoco, one of India's most loved food brands, is now open in Frisco, Texas. Enjoy iconic favorites like chana puri sandwiches, delicious curries, and the legendary Hoco Cold Coco. जी हाँ, उसका नाम ही ऐसा है, Hoco Cold Coco. Visit 2693 Preston Road, Suite 1000, Frisco, or explore the menu at hoco.us. आप यहाँ पर जाकर भी उनका मेन्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक बार फिर से सुन लीजिए, hoco.us, which is hoco.us. Come hungry and leave with a taste of India. 20% student discount with a valid student ID and a 20% discount for employees on lunch packs. Available Monday through Friday during office hours. जी हाँ, तो Hoco की तरफ से आपके लिए गिवअवे लेकर आई हूँ दोस्तों. आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ये जो अगला, जी हाँ अगले मराठी गाने की रिक्वेस्ट आई है हमें प्रवीण साहब की तरफ से, तो ये अगला गाना जो मैं प्ले करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा गाना है और बहुत ही प्यारी सी सिंगर ने गाया है. तो आपको मुझे गाना सुन के सिंगर कौन है ये पहचाना है और आपको मुझे बताना है कि कौन से सिंगर ने ये गाना गाया है. स्टूडियो का नंबर 9722355555. ये जो अगला मराठी गाना मैं प्ले करने वाली हूँ प्रवीण साहब की रिक्वेस्ट पर, आपको मुझे ये बताना है कि इसके गाने के सिंगर का नाम क्या है. सही जवाब देने वाले को मिल सकता है अ प्लेट ऑफ आलू टिक्की चैट फ्रॉम Hoco बाय आंसरिंग दिस सिंपल क्वेश्चन. बताना है आपको मुझे कि ये गाना कौन से सिंगर ने गाया है. 9722355555.
1: माझ्या नादी लागू नको सिंधू.
2: अहो आता कसला नाद, पारखोळी झाले मी.
1: करणार कायस या खोळाचं,
2: पळवून नाही तुम्हाला.
1: आणि पळवून देऊन काय करणार,
2: काय करतात पळवून देऊन, लग्न कर.

0: भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
1: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
3: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
4: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
3: नहीं।
4: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
3: नहीं।
4: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
3: वो भी नहीं।
4: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
5: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
6: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies night and college nights bhi.
5: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage. Have you thought about what would happen if you or a business partner passed away unexpectedly? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
8: Sign milna mushkil hai, lekin pleno mein जबरदस्त थाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
9: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
10: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
11: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
12: तुमसे मिलके दिल का है।
10: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
11: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के

मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 34 मिनट्स पास्ट 5। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा, मैं बोले तो आपकी अपनी अपूर्वा, और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। 5 और 6 से बीच में हम रीजनल लैंग्वेज के गाने सुन रहे हैं। बहुत सारे गाने अभी भी प्ले करना पेंडिंग है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको अगले गाने की तरफ लेकर चलती हूँ। दिस वन इज अगेन अ मराठी सॉन्ग टेकन फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी।

ब्यूटीफुल गाना श्रेया घोषाल की आवाज में सुन रहे थे दोस्तों आप, लेकिन फ्रॉम द मूवी चंद्रमुखी बहुत ही अमेजिंग गाना है। अगर आपने इस गाने का वीडियो नहीं देखा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच इट। यूट्यूब पे जाके चंद्रा गाने को सर्च कीजिए और देखिए ब्यूटीफुल अमृता खानविलकर इज अमेजिंगली डांस इन दिस सॉन्ग। अगले गाने की तरफ जाएंगे, उससे पहले बता दूं दैट यू कैन गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक एक्सपीरियंस रिवॉल्यूशन द वन एंड ओनली सोनू निगम लाइव इन कॉन्सर्ट। Experience the Revolution Saturday, September 26th at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite songs, that iconic voice, all live. Tickets are available at Ticketmaster page. जाकर आप tickets available है आपके लिए. For more information, you can call the number. The number to call is 855-360 Shows Revolution. Sonu Nigam live, exclusive media partner. Fun Asia Network. Well, अगला गाना है तमिल लैंग्वेज में और श्वेता की रिक्वेस्ट पर ये गाना आप सबके लिए प्ले करती हूँ। Enjoy!

श्वेता की रिक्वेस्ट पर ये तमिल गाना आप सुन रहे थे दोस्तों। अगले गाने की तरफ जाएंगे, बट उससे पहले आपको एक लास्ट अनाउंसमेंट बताना जरूरी है। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ जन्माष्टमी, एक्सपीरियंस द डिवाइन स्पिरिट ऑफ ब्रज विद द मेलोडियस वॉइस ऑफ आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी जी प्रेजेंटिंग चिरजीवे लाल कन्हैया, अ सोलफुल भजन दैट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द जॉयस सेलिब्रेशन एट नंद भवन वेयर द बर्थ ऑफ कन्हैया feels all of Braj with happiness. Presented by Divine Records and Braj's Productions, the official music video release released on September 4th of 2026. So let us become a part of this divine celebration. Agle gaane ki taraf jayenge. Agle gaane ki request hai Maithili gaane ki. Ji haan, Maithili bhasha hai. Usme ka gaana request kiya hai Ratan sahab ne. To chaliye ye wala gaana sunte hai.

वेल दैट वाज अ कनाडा सॉन्ग और इसी के साथ मेरा शो रैप अप करने का वक्त आ चुका है दोस्तों. जाने से पहले आपको कुछ बता देती हूँ दैट इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द डिवास्टेटिंग नेपाल फ्लड डिजास्टर द कम्युनिटी इज कमिंग टुगेदर फॉर अ कंडोलेंस एंड कैंडल नाइट विजिल. जॉइन ऑन सैटरडे विच इज टुडे सेप्टेम्बर 12th फ्रॉम 7 PM टू 8 PM एट द रोनाल्ड कर्क पेडिस्ट्रियन ब्रिज एज वी रिमेंबर द लाइव्स लॉस्ट एंड प्रे फॉर दोज स्टिल मिसिंग एंड स्टैंड in a solidarity with the affected families. The vigil is organized by Visit Nepal. Let us come together as one community in comparison, in compassion, remembrance and hope for a stronger Nepal.

ऑलराइट दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 5:50, यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का। आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है। यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है। विद दैट लिव फुली, लव पैशनेटली एंड लाफ लाउडली। लेती हूँ आप सबसे बड़ा इसी थॉट के साथ और करती हूँ संडे यानी कि कल यही टाइम 3 to 6 PM का मिलने का वादा। जी हाँ, कल भी अमरीन जी आने वाली नहीं है, तो कल भी मैं आपको 3 to 6 के बीच में एंटरटेन करूंगी और जो मेरा रेगुलर शो टाइम होता है 6 to 8 उसको प्रेम कवर करेंगे। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लिसन टू मी टुमारो बिटवीन 3 to 6 PM। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डॉलर्स एंड हैव अ फन फन संडे इवनिंग।

देखिए लाइफ में सब कुछ फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए। वेरी गुड इवनिंग डैलस, आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आरजे सिमी को ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। मैं रहूंगी आपके साथ 6 बजे से रात के 9 बजे तक, करूंगी ढेर सारी बातें, मस्ती और धमाका, तो तैयार हो जाइए। और शुरुआत हम कर रहे हैं एक ऐसे वर्ड से जिसके बारे में हम लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं उसे समझना और समझाना भी चाहती हूँ। आपने कितनी बार सुना होगा कि बेटा अब तो अमेरिका आ गए हो, सेटल्ड हो गए होगे, शादी हो गई, अब तो लाइफ सेटल्ड है, अच्छी जॉब मिल गई, अब क्या चाहिए, लाइफ तो सेटल हो गई दोस्त। लेकिन क्या अपना घर, अपनी कार, सेविंग्स, ये सारी चीजें हो तभी आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ सेटल्ड है? हम बात करने वाले हैं द वर्ड सेटल्ड के बारे में। और आज का सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या सेटल्ड होने का मतलब सिर्फ अच्छी जॉब, अपना घर, बैंक बैलेंस और एक कंफर्टेबल लाइफ है? आप मुझे फोन करके बताइए बाय कॉलिंग मी एट 972-235-5555।

इसमें ना बस थोड़ी सी मुश्किल है कि रेडियो पे चेहरा नहीं दिखा पाते यार. आप सुन रहे हैं आरजे सिमी को, और मैंने सॉन्ग्स के पहले आपसे पूछा था कि आपके लिए सेटल्ड होने का डेफिनेशन क्या है. मुझे बहुत सारे कॉल्स आए और मुझे नौरीन का आंसर बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा कि सेटल्ड होने का या सक्सेसफुल होने का, जो भी आप कह ले, उसकी डेफिनेशन उनके लिए ऐसा है कि मेंटल पीस का होना बहुत ज़रूरी है. एंड आई टोटली अग्री. और ये थोड़ा डिफरेंट है देन व्हाट आवर पेरेंट्स थिंक. और सबके केस में ऑफकोर्स अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन हमारे इंडियन पेरेंट्स के लिए ना, या हमारे कंट्री से, उनके लिए सेटल होने की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है. उनके लिए सेटल होने का मतलब अक्सर होता है अच्छी जॉब, अपना घर, शादी, बच्चे, सेविंग्स और एक सिक्योर फ्यूचर. और ऑनेस्टली, लाइक आई सेड, उनकी सोच भी गलत नहीं है. उन्होंने अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए बहुत मेहनत की है. उनके टाइम पर जॉब मिलना, घर बनाना, फैमिली वगैरह को देखना बहुत बड़ी अचीवमेंट हुआ करती थी. लेकिन आज के जनरेशन के लिए सेटल होने का मतलब थोड़ा चेंज हो गया है. कोई कहता है कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कोई कहता है कि मुझे अपनी मेंटल पीस चाहिए लाइक नॉरीन सेड, एंड कोई कहता है कि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए जहां मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सकूं, और कोई कहता है कि मुझे तो बस इतना चाहिए कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं. तो क्या हम दोनों जनरेशन को एक ही डेफिनेशन से जज कर सकते हैं? शायद नहीं. एंड कमिंग अप नेक्स्ट इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मोहम्मद सैयारा लिरिकल. आई होप यू गाइस लाइक इट.

आज हम बात कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट वर्ड के बारे में जो कि है सेटल्ड। हम बहुत बार अक्सर अपने कॉन्वर्सेशन में ये सुनते आते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ रहे हैं, मनी। क्या पैसा सेटल्ड होने के लिए जरूरी है? बिल्कुल है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंट्स देने हैं, बिल्स पे करने हैं, फैमिली सपोर्ट करनी है, फ्यूचर के लिए सेव भी करना है, ये सब रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? सपोज कीजिए कि अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो हमेशा स्ट्रेस रहता है या रहती है, अगर किसी के पास लग्जरी कार है लेकिन उसे अपने फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, या फिर किसी के पास बहुत सुंदर घर है लेकिन घर में रहने का मौका ही नहीं मिल पाता है, पीस नहीं है, तो क्या हम उसे सेटल कहेंगे? और दूसरी तरफ अगर कोई अपना घर नहीं खरीद पाया लेकिन अपने पार्टनर के साथ खुश है और अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, अपने हेल्थ पे ध्यान रख रहा है या रख रही है और हर दिन अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो क्या वो सेटल नहीं है? शायद सेटल होना एक डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि एक फीलिंग है।

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
2: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
1: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
2: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
3: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक।

आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है अबाउट द वर्ड सेटल्ड और अब हम बात कर रहे हैं हमारी देसी लिसनर्स की जो कि अमेरिका में रहते हैं ऑफकोर्स। और अमेरिका में आने के बाद ना एक अलग ही प्रेशर होता है। लोग पूछते हैं कि भाई अमेरिका में क्या कर रहे हो, जॉब कैसी है, अपना घर ले लिया, ग्रीन कार्ड का क्या हुआ, और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर पूछेंगे बच्चे कब, फिर बच्चे हो गए तो फिर पूछेंगे कि भाई दूसरा बच्चा कब। मतलब ये जो सेटल्ड होने का क्वेश्चन है ना, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता। और हर सवाल के बाद लगता है कि शायद सामने वाला बोल रहा है तो लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है ही। लेकिन सच तो ये है कि आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किसी से कंपेयर नहीं किए जा सकते। किसी को अमेरिका में आके जॉब मिल गई, किसी को जॉब चेंज करनी पड़ी, हर किसी की जो डेफिनेशन होती है ना सेटल्ड होने की वो डिफरेंट होती है। और मुझे जानना है कि भाई आपकी सेटल्ड होने की डेफिनेशन क्या है, आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555 पे। एंड सफी की रिक्वेस्ट पे मैं ये नेक्स्ट सॉन्ग बजाने जा रही हूँ, देसी बॉयज।

एक ऐसी ही एक नंबर जगह के बारे में बताने वाली हूँ मैं अभी आपको, एंड दैट इज Page 3 E3। यहाँ पे ना आपको बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मिलेगा विथ मॉडर्न फ्लेवर, सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवरफुल चाट तक इसके फ्यूजन बाइट्स अमेजिंग है और मॉकटेल्स वगैरह भी काफी रिफ्रेशिंग है। आप यहाँ पे लंच के लिए जा सकते हैं, ब्रंच के लिए जा सकते हैं, डिनर हो, डेट नाइट हो, या फिर अपने दोस्तों या अपनी फैमिली के साथ फूडी मीटअप भी कर सकते हैं। और जस्ट लाइक आवर वाइब्रेंट वाइब्स ऑफ दिस सॉन्ग्स, यहाँ की वाइब भी किलिंग है, आई मीन अमेजिंग है, वाइब्रेंट है। और ये हब 121 पे लोकेटेड है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दो कि आपको Page 3 E3 अगर अभी तक नहीं गए हैं ना, तो आप सीरियसली लाइफ में बहुत अमेजिंग सा खाना मिस कर रहे हैं, टेस्टी। ओए होए होए, मतलब मैंने खुद उनके चार्ट्स जो है खाए हुए हैं और दे आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, लाइक दिस इज माई पर्सनल फीडबैक ऑल्सो। तो अगर आपको इनके बारे में और जानना है, इनके ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स या फिर मेन्यू चेक करना है, तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज Page 3 E3 .com।

You are listening to RJ Simi only on Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं आपसे आज बातें कर रही हूँ बहुत सारी about the topic settled होना कि life में किसे settle होना कहते हैं और कभी कभी ना हम अपनी life में इतना आगे देखते रहते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम कितना आगे already आ चुके हैं. आपने कितनी चीज़ें ओवरकम की हैं, कितने डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं, कितनी बार रीस्टार्ट किया है, कितनी बार खुद को मोटिवेट भी किया है और फिर हम सोचते हैं कि यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है. लेकिन आपके लिए जो नॉर्मल है ना वो किसी के लिए ड्रीम हो सकता है. आपने जो ऑलरेडी अचीव कर लिया है वो आपके लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो किसी के लिए एंड गोल है. तो आपका अपना घर, आपकी जॉब, आपकी फैमिली, आपका हेल्थ, आपकी फ्रीडम, आपका पीसफुल मॉर्निंग, ये सब चीजें सेलिब्रेट करने के लायक है. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी और कुछ अचीव नहीं करना. आपके ड्रीम्स बिल्कुल वैलिड है लेकिन आपकी करंट लाइफ भी इक्वली वैल्यूएबल है क्योंकि ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन ना एक साथ चल सकते हैं. ट्रस्ट मी.